0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के

0: बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे

0: ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
1: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
3: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
4: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमेरिका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए

0: कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shriram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi. On the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month, over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
4: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड ना करें।
3: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours. Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार मुंबई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरी मुंबई. मैं हूँ आरजे नम्रता एंड आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो. सुबह के 8:41 हो चुके हैं और ये है मस्त मुंबई, एक ऐसा शो जो हर सुबह देता है मुंबई को एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और थोड़ा सा पुरानी यादों का डोज. तो बने रहिए मेरे साथ. मैं हूँ आरजे नम्रता एंड हम हैं म्यूजिकली योर्स.

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यार्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अंकोर वाट विष्णुधाम कंबोडिया हेरिटेज यात्रा, विश्वातील सर्वात मोठ्या मंदिराची एक अद्भुत अनुभूती।
4: 2 ते 10 डिसेंबर 2026, इतिहास, संस्कृती, वारसा, मंदिर स्थापत्य आणि परंपरा यांचा अनोखा संगम।
3: अंकोर थॉम, बयॉन, बांटी श्री सह 14 मंदिरे, नॅशनल म्युझियम, टोनले सॅप आणि विशेष आकर्षण अप्सरा नृत्य।
4: सोबत प्रख्यात लेखक व मंदिर स्थापत्य तज्ञ प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले, शाकाहारी भोजन, 5-star हॉटेल्स, आतापर्यंत 1200 अधिक जणांची कंबोडिया भेट,
3: विमान प्रवास, व्हिसा, सर्व खर्चासह 15 सप्टेंबर पर्यंत विशेष पॅकेज 1,40,000 रुपये फक्त।
4: ऑनलाइन बुकिंग साठी कंबोडिया अंकोर फाउंडेशन डोंबिवली, संपर्कासाठी फोन 98 21 40 38 38।
5: फोन पुन्हा एकदा 98 21 40 38 38।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
7: एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। 9:04 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल है ये, और इसका प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी कि DRM पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आज संडे मॉर्निंग में RJ नम्रता आपके साथ। एंड भाई, मौसम आज का बहुत ही खूबसूरत है, सुहाना है। मुंबई में जो बारिश है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है, लेकिन यस, थोड़ी थोड़ी देर में हमें बारिश अपनी झलक दिखाई देती है। बता दी थी कि नहीं भाई, अभी मैं पूरी तरह से गई नहीं हूँ, अभी मैं हूँ गणेश उत्सव, इसके बाद मैं नवरात्र।

यात्री भी करके जाऊंगी, और अगर हो सके तो पिछले साल की तरह मैं धनतेरस या फिर दिवाली तक भी आपका साथ देने वाली हूँ। एनी विच वेज, आज है संडे और हमारा वीकेंड स्पेशल यानी कि संडे स्पेशल जो सेगमेंट है जिसका नाम है आज चल के तुझे शुरू हो चुका है बिल्कुल बिल्कुल इसी गाने के साथ जो थोड़ी देर में आप सुनने वाले हैं। वेल, संडे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करते हैं हमारे पूरे भारत के बारे में, खासकर ऐसी जगहों के बारे में जहां पर आप अपने वीकेंड्स पर घूमने जा सकते हैं या फिर एक छोटा सा या फिर एक बड़ा सा वेकेशन जो है वो यू नो प्लान कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना मुझे अपने आसपास की जगहों पर गौर करना चाहिए बिफोर आई गो अहेड, है ना। तो मैं मोस्टली बात करती हूँ महाराष्ट्र के बारे में, एंड ऑफकोर्स आज मैं आपको महाराष्ट्र के एक ऐसी जगह के बारे में बताऊँगी जो ऑफकोर्स आपको पता है, बट मैं जस्ट आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जैसा कि आजकल ट्रेंड्स चल रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग बहुत दूर दूर की जगहों पर जाने लगे हैं और अपने जगहों के आसपास देखना लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है, तो मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो है वो एक के बाद एक फेस्टिवल्स आप देखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में अक्रॉस दी इंडिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार अब थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए, कहीं यू नो एकांत में जाया जाए, क्योंकि फेस्टिव सीज़न जब शुरू होता है तो अक्सर हम आसपास बहुत भीड़ बहुत शोर फील करते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब इससे थोड़ा हमें अलग जाना है, तब आप महाराष्ट्र के लोनावला और खंडाला की तरफ रुख कर सकते हैं, और भागदौड़ से परेशान हो जाएं तब की मैं बात कर रही हूँ। एंड क्योंकि अक्सर ये होता है कि हर दिन वही ऑफिस, वही डेडलाइंस, वही ईमेल्स, और हमारा एक सेट रूटीन होता है जिसकी वजह से हम अपने आप को एक मी टाइम जैसा कहते हैं आजकल वो नहीं दे पाते। तो थोड़ा सा अपना रूटीन जो है वो आप बदल सकते हैं मुंबई से निकलते ही, जैसे आपको लगे कि भाई अब सड़कें जो हैं शहर जो है वो पीछे छूट गया है, आपको थोड़ा बदलाव नज़र आने लगेगा अगर आप अपने खुद के व्हीकल से जा रहे हैं या फिर आप अगर आप ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप खंडाला और लोनावला की खूबसूरत वादियों में आ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीकेंड पर यानी कि दो दिन में, इनफैक्ट कुछ लोग तो एक दिन में भी वापस जाकर आते हैं, वन डे ट्रिप भी करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। चारों तरफ हरियाली है, एंड ऑफकोर्स क्योंकि बारिश अभी हो रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गई है, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो आपके घूमने का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। नहीं, मौसम बहुत सुहावना है वहाँ पर, और ट्रस्ट मी जाकर आइए वीकेंड के लिए, एक बहुत खूबसूरत और सुकून वाली जगह है ये। ट्रेन से जा सकते हैं आप, मुंबई से 2 से 2.5 घंटे में आप आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी खुद के व्हीकल से जाना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप आसानी से जा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप अपना फ़ोन जो है वो थोड़ा साइड में रखेंगे और वहाँ के नज़ारों का मज़ा लेंगे, एंड यस एक ज़िम्मेदार टूरिस्ट बनेंगे, अपने साथ ले जाने वाला हर जो वेस्ट है वो आप अपने साथ रखेंगे और उससे एक सही जगह पर डिस्पोज करेंगे, राइट। मैं हूँ आरजे नम्रता, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, और बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत गाने आने वाले हैं अब आपके लिए।

श्वेता सेट्टी, हंसराज हंस की आवाजों में था ये गाना जो आपने अभी अभी सुना फ्रॉम द मूवी बिच्छू। 9:21 हो चुके हैं, मैं हूँ आरजे नम्रता आज आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। एंड भाई थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग विशेज लिखकर भेजे हैं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। हाँ जी, कल ही हमने हमारे पूरे भारत देश में जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है, आप सभी को भी एक बार फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हो गई हूँ लेकिन कोई नहीं भाई, अब तो फेस्टिवल सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। इसी तरह आपको आने वाले हर त्योहारों की बधाइयाँ मिलती रहेंगी, जब भी मेरा शो होगा मेरी तरफ से मिलती रहेंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपने खूबसूरत मैसेजेस पहुँचाइए 8657661071 8657661071। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। वेल आज हम बात कर रहे हैं ये लोनावला और खंडाला आप जा सकते हैं अपने वीकेंड में, अगर आप थोड़ा बहुत रिलैक्स चाहते हैं, बहुत रिलैक्स चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई काफ़ी काम कर लिया है, थोड़ा तो है ना हमें अपने आप को पर्सनल टाइम देना चाहिए। तो मैं आज बात कर रही थी हमारे महाराष्ट्र की खूबसूरत जगह लोनावला और खंडाला के बारे में, जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं। वैसे मुंबई गज की ना एक ख़ास बात है, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि हर इंसान में ये बात होती है कि हम प्लान्स तो बहुत जल्दी बना लेते हैं लेकिन जब तक हमारा घूमने का वो समय आता है ना, कई सारे लोग जो हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं और कभी कभी हम खुद भी कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास प्लान्स जो है उसे उन्हें पूरा करने के लिए कभी कभी समय नहीं होता। बहुत सी ऐसी और भी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती हैं दूसरी हमारी लाइफ में जिनकी वजह से हम नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी प्रायोरिटीज़ को आप थोड़ा पहले सॉल्व कर दीजिए और समय निकालें अपने आप को एक अच्छी लोकेशन पर लेकर जाने का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। राइट, जब भी आपको फुर्सत मिलती है, इस वीकेंड तो आप नहीं कर सकते क्योंकि संडे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अगर अभी भी आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आने वाले वीकेंड्स में ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने दोस्तों के साथ निकल जाइए या फिर अपने घर वालों के साथ या फिर उस खास शख्स के साथ जिसके साथ आपका हर सफ़र एक डेस्टिनेशन बन जाता है।

0: लकी अली की आवाज़ में था ये गाना, कहूँ ना प्यार है इस फिल्म से। मैं हूँ आरजे अमृता और अब आप सुनने वाले हैं हमारा संडे स्पेशल स्पॉन्सर प्रोग्राम वतन का राग। परे रहिए हमारे साथ।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है वीर गुलाब सिंह लोधी। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से अरुण सिरोही और छपरा बिहार से प्रीतम चंद्र श्रीवास्तव। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

समय के निरंतर प्रवाह में तारीखें बीत जाती हैं, पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन बीते समय के गलियारों में उन कदमों की आहट सुनाई देती रहती है जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिनका हर कदम देश के लिए बढ़ा। भारतीय स्वाधीनता इतिहास के गलियारों में ऐसे अनगिनत कदमों की गूंज सुनाई देती है। ये आहट उन नौजवानों की है जिन्होंने गुलामी के अंधेरों के बीच भी आजादी के सूरज का स्वप्न देखा, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के भाग्य में स्वाधीनता का सौभाग्य लिखा और अपनी सांसें देश के नाम कर दी। ऐसे ही एक अमर बलिदानी है शहीद बूटा सिंह। अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए देश के भीतर और बाहर कई आंदोलन चलाए गए, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुए गदर आंदोलन का स्थान इन सबसे अलग और अनूठा है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य विदेशी धरती से भारत में क्रांति की अलख जगाना और ब्रिटिश भारतीय सेना की बैरकों के भीतर तैनात भारतीय सैनिकों के माध्यम से एक व्यापक सैन्य संघर्ष आयोजित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1915 में गदर पार्टी द्वारा बुना गया सैन्य संघर्ष का तानाबाना इतना व्यापक था कि इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। इस योजना में ब्रिटिश भारतीय सेना की 23वीं कैवलरी के सैनिक भी शामिल थे। इसी रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिक थे बूटा सिंह। बूटा सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के कसैल नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंचल सिंह था। कसैल और उसके आसपास का क्षेत्र शुरू से ही अपनी देशभक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। खेती किसानी के बीच ऐसे ही वातावरण में उनकी परवरिश हुई। इस तरह बूटा सिंह को बचपन से ही धार्मिक संस्कार, ईमानदारी और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा अपने परिवार से विरासत में मिली।

बूटा सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उस समय पंजाब में ग्रामीण युवा आजीविका के लिए अक्सर सेना में भर्ती हुआ करते थे। बूटा सिंह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अनुशासित और अत्यंत साहसी थे, इसलिए युवावस्था में प्रवेश करते ही वो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर बूटा सिंह 23वीं कैवलरी में एक सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। 23वीं कैवलरी ब्रिटिश भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी, जिसे एक प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंट के रूप में जाना जाता था। इस रेजिमेंट में पंजाब के वीर जवानों की बड़ी संख्या थी। एक सैनिक के रूप में बूटा सिंह अत्यंत अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और अपने साथी सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, लेकिन वर्दी पहनने के बावजूद उनके सीने में भारत माता की गुलामी की टीस हमेशा बनी रहती थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय और एशियाई मोर्चों पर अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी समय पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के शोषण और उनकी दमनकारी नीतियों के कारण असंतोष अपने चरम पर था। इन परिस्थितियों ने बूटा सिंह जैसे संवेदनशील सैनिकों के मन को झकझोर कर रख दिया था। विदेशों में रह रहे प्रवासी क्रांतिकारी भी उद्वेलित थे। परिणाम स्वरूप बाबा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी गदर पार्टी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दे रहे थे। गदर पार्टी का स्पष्ट मानना था कि जब तक ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक अंग्रेजों का साथ देना बंद नहीं करेंगे और जब तक अपनी बंदूकें अंग्रेजों की तरफ नहीं मोड़ देंगे, तब तक भारत की आजादी संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारियों ने विभिन्न सैनिक छावनियों जैसे लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ और नौगांव में तैनात भारतीय सैनिकों से गुप्त रूप से संपर्क साधना शुरू किया। क्रांतिकारी प्रेम सिंह गदर पार्टी के संगठनकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात 23वीं कैवलरी के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया। प्रेम सिंह ने सैनिकों को गदर पार्टी के उद्देश्यों और अंग्रेजों की नीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराया। बूटा सिंह

और उनके साथी सैनिकों के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था। प्रेम सिंह के विचारों ने बूटा सिंह के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को और अधिक प्रचंड कर दिया। उन्होंने अपनी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और जीवन की परवाह न करते हुए गदर आंदोलन से जुड़ने का संकल्प लिया। बूटा सिंह ने न केवल खुद को इस महायज्ञ से जोड़ा बल्कि 23वीं कैवलरी के अपने अन्य साथी सैनिकों को भी इस गुप्त सैन्य संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह 23वीं कैवलरी की नौगांव में तैनात टुकड़ी यूं तो बाहरी तौर पर अंग्रेजों की सेना नजर आ रही थी, लेकिन बूटा सिंह और उनके अनेक साथी जवान अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का शंखनाद करने को तैयार हो चुके थे।

बूटा सिंह गदर आंदोलन से जुड़ चुके थे। अपने साथी सैनिकों के साथ वो गुप्त क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से सक्रिय थे। इसी बीच गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में सैन्य संघर्ष की योजना बनाई। योजना ये थी कि देश भर की विभिन्न छावनियों में भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों को बंदी बना लेंगे या मार गिराएंगे तथा शस्त्रागारों पर कब्जा कर लेंगे और गदर पार्टी का झंडा लहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। इस व्यापक योजना हेतु सभी सैन्य छावनियों से संपर्क किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की नौगांव छावनी भी शामिल थी, जिसमें बूटा सिंह तैनात थे। इस विद्रोह को लेकर सैनिकों में बड़ा उत्साह था और तैयारी भी मजबूत थी। लेकिन किरपाल सिंह नामक एक गद्दार ने अंग्रेजों तक ये सूचना पहले ही पहुंचा दी और समय से पहले ही इस योजना का खुलासा हो गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। विद्रोह की योजना के उजागर हो जाने के बाद भी 23वीं कैवलरी के सैनिकों, विशेष रूप से बूटा सिंह का हौसला टूटा नहीं था। वो छावनी के भीतर रहकर सही समय का इंतजार करने लगे और गुप्त रूप से अपने पास विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करते रहे। इस योजना की विफलता के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को लगने लगा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा था नहीं। मई सन 1915 में 23वीं कैवलरी की टुकड़ी को, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात थी, उसे यहां से हटाकर युद्ध के मोर्चे पर भेजने का फैसला किया गया। सैनिकों को रेलगाड़ी से रवाना किया गया। 13 मई सन 1915 की तारीख थी। सैनिकों को ले जा रही ट्रेन हरपालपुर स्टेशन पर रुकी। सैनिक अपना सामान ट्रेन के डिब्बे में व्यवस्थित कर रहे थे कि अचानक एक बक्सा नीचे गिर पड़ा। इस बक्से में गुप्त रूप से रखी गई विस्फोटक सामग्री, बम और हथियार रखे हुए थे। बक्सा गिरते ही रेलवे स्टेशन में प्रचंड विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरे स्टेशन में

अफरातफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब पूरे सामान की तलाशी ली गई तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। बक्से के भीतर से बम बनाने की सामग्री और हथियार तो मिले ही, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य, पर्चे और गुप्त योजना के दस्तावेज भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्टेशन का ये विस्फोट ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इस घटना से अंग्रेज ये समझ गए थे कि ये सैनिक सामान्य सैनिक नहीं हैं, बल्कि ये गदर पार्टी के उस गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जो ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए सेना के भीतर काम कर रहा था। अंग्रेजों ने हरपालपुर स्टेशन और नौगांव छावनी को घेर लिया। गहन जांच शुरू हुई और संदेह तथा साक्ष्यों के आधार पर 18 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में बूटा सिंह मुख्य रूप से शामिल थे, क्योंकि वो छावनी में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। इन 18 सैनिकों के विरुद्ध शिमला के पास स्थित डगशाई सैन्य छावनी में कोर्ट मार्शल किया गया और एक तरफा फैसला सुना दिया गया। 12 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई और शेष सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। मृत्यु दंड पाने वाले 12 सैनिकों में बूटा सिंह का नाम प्रमुखता से शामिल था। बूटा सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को अंबाला सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 3 सितंबर सन 1915 को बूटा सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सबसे मार्मिक तथ्य ये है कि उनके परिवार के सदस्यों को उनकी फांसी की सूचना तक नहीं दी गई। इस तरह भारत माता के एक सच्चे सपूत ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को बढ़ावा को दर्शाती है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिले में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। दही हांडी उत्सव के दौरान कल महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत हो गई।

मुंबई में एक 7 वर्षीय बच्चे की जान चली गई, जबकि पुणे में लोहे का ढांचा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उत्सव के दौरान मानव पिरामिड बनाते समय मुंबई में 168 और ठाणे में 44 गोविंदा घायल हुए। महिला क्रिकेट में दुबई T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। यह मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान है। और इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।

केके की आवाज में था ये गाना फ्रॉम द मूवी गाइड्स। 107.1 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आरजे नम्रता और आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल है ये, और इसका प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी कि डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 10:06 हो चुके हैं और ये है रविवार यानी कि संडे की सुबह और मैं हूँ आरजे नम्रता आपके साथ। भाई हफ्ते के बाकी दिन ना हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन रविवार यानी कि संडे का जो एक ऐसा दिन होता है ना, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार आज तो बस हम अपने दिल के हिसाब से चले, है ना। और आज का रविवार तो थोड़ा खास है क्योंकि आज मेरा दिल मेरी बातें जो कि हमारा संडे स्पेशल सेगमेंट होता है ठीक 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो कि आप सुनते हैं, उसमें बात होने वाली है संडे यानी कि रविवार की, उस दिन की जिसका हम पूरे 6 दिनों तक इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि कब हमारा संडे आए, हम काम से फुर्सत पाए, या फिर अगर आप पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट है तब भी आपको लगता है ना यार बस अब कॉलेज नहीं जाना, एक दिन स्कूल नहीं जाना और अपना संडे जो है वो एंजॉय करना है ना, एक अलग ही खुशी होती है हमें संडे आने की। सोचिए रविवार की सुबह में आखिर ऐसा खास क्या होता है यार, देखो वही घर है ना, वही लोग हैं, वही चाय है, लेकिन चाय की पहली चुस्की ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगती है। अलार्म बजता है तो मन करता है कि भाई आज रहने दो, कल से यानी कि मंडे से तो फिर हमें समय पर उठना ही है ना, उठेंगे क्या हम, उठाए जाएंगे। और घर में अगर कोई पूछ ले कि आज करना है तो जवाब आता है कि कुछ नहीं, आज बस कुछ भी नहीं करना। पर दोस्त ये कुछ नहीं करना भी ना जिंदगी को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर करता है, और एक्चुअली हम बहुत कुछ कर भी जाते हैं। रविवार हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ काम के लिए नहीं बने, थोड़ा रुकना भी ज़रूरी है, थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है, अपने लोगों के साथ बैठना, पुराने गाने सुनना, बालकनी में बस ऐसे ही खड़े रहना, सनसेट देखना, सनराइज़ देखना, चाय पीना, अखबार पढ़ना या फिर कोई अच्छी सी किताब लेकर बस अपने बेड पर लेट जाना और उसे धीरे धीरे पढ़ते रहना तब तक आपको नींद ना आ जाए, या फिर बस ऐसे ही चुपचाप बैठे रहना, ये सब भी तो जिंदगी का हिस्सा है ना। पूरे हफ्ते हम इस दुनिया को समय देते हैं, लेकिन संडे कैसा दिन होता है जब हमें लगता है कि हमें समय देना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, और अगर नहीं लगता तो लगना चाहिए। क्योंकि स्लो लिविंग ना आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो इसलिए क्योंकि हम हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, हमारे हाथों में हमेशा हमारे मोबाइल फोन से होते हैं, कंटिन्यूसली हम लोगों के मैसेजेस चेक करते हैं, अपडेट्स चेक करते रहते हैं कि ऑफिस में कहीं कुछ नया तो नहीं करना, बॉस का मैसेज तो नहीं है। लेकिन संडे एक ऐसा दिन है जब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नहीं यार आज कुछ नहीं, आज कोई अपडेट नहीं, आज कोई डेडलाइन नहीं, बस मैं और मेरा ये दिन जो मैं चाहती हूँ कि आराम से जाए और मैं खूब सारा आराम करूँ, है ना, मुस्कुराऊं, ठहर जाऊं, रुकूं और इस खूबसूरत संडे का लुत्फ उठाऊं। मैं हूं आरजे नम्रता, आप इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। संडे के बारे में और भी बात करने वाली है, एंड यस ये वाला गाना जो सोनू निगम और अलका याग्निक ने गाया है आपको जरूर सुनाऊंगी, बट बिफोर दैट क्योंकि संडे की बात हो रही है मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी संडे। महुआ कामत, सूरज और अल एडगर की आवाजों में बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आरजे नम्रता एंड दिस इज संडे। हैप्पी संडे, नमस्ते भारत।

0: Tick, tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick.
1: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
1: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
3: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
4: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
5: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

सोनू निगम और साथ में अलका याग्निक, हर दिल जो प्यार करेगा। इस फिल्म से था ये गाना। 24 जुलाई 2000 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म के गाने जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। अगर आप एक मिलियनर हैं तो आपने इस फिल्म को ज़रूर देखा होगा। वैसे जेंसीज ने भी देखा होगा, आई नो इट। लेकिन गाने उस वक्त काफ़ी धूम मचाए हुए थे इस फिल्म के। एनीवे, आज है संडे और आज मेरा दिल मेरी बातों में हम बात कर रहे हैं संडे कितना महत्वपूर्ण, कितना इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे कैसा लग रहा है, चल कैसा रहा है आज आपका संडे? उम्मीद है कि चाय का कप आपके हाथ में होगा, और नहीं होगा तो शायद अखबार होगा। और अगर चाय नहीं भी है, अखबार भी नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, हम हैं यहाँ पर रेडियो पर। कल्पना में अपनी चाय पी लीजिए। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए कि रविवार का मतलब क्या है? कुछ लोगों के लिए रविवार का मतलब देर तक सोना हो सकता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि रविवार है, संडे है, छुट्टी है, तो बस देर तक सोया जाए। किसी के लिए परिवार यानी अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करना होता है, क्योंकि अक्सर हम जब ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो हम ज़्यादातर अपना टिफ़िन जो है वो पैक करके लेके जाते हैं, वक्त नहीं मिलता, ऑफिस में जाकर नाश्ता करते हैं या फिर रास्ते में कहीं कर लेते हैं। किसी के लिए दोस्तों के साथ बाहर निकलना होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि मैं बस बाहर निकलूँ कहीं संडे के दिन। एंड काफ़ी ऐसे लोग हैं भाई जो संडे के दिन क्रिकेट खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भाई संडे है मतलब क्रिकेट। कुछ लोगों के लिए बस बिस्तर में पड़े रहना, मोबाइल अपने हाथ में लेना और ये डिक्लेयर कर देना, ये ऐलान कर देना कि आज मुझे कोई काम नहीं बताएगा कोई। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात है कि रविवार हमें हमारी पसंद वापस देता है। मतलब संडे एक ऐसा दिन है ना जब हम अपनी पसंद का कुछ करना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई हमारे लिए कोई रूटीन सेट होना चाहिए कि जैसे घर वालों ने या किसी और ने सेट किया हो या फिर हमने खुद ने भी किया हो, क्योंकि हम खुद भी कभी कभी अपना संडे जो है वो प्लान नहीं करते। हम बस ऐसा होता है कि वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो सामने आ जाए, जो पसंद की चीज़ उस दिन हमें मिल जाए वो हमें करनी है। बहुत सी सालों पहले कोई एक किताब आपने खरीदी हो, अगर उस संडे को आपको वो मिल गई तो आप उसे पढ़ने बैठ जाएंगे। कोई ऐसा गाना जो आप इन दिनों नहीं सुन रहे हैं और अगर बाई चांस आपने सुन लिया, आपके जहन में आ गया, तो आप उसे सुनने बैठ जाएंगे। जिम जाना जो होता है, बहुत से लोग एक टाइट स्केड्यूल की वजह से नहीं जा पाते, तो उस दिन संडे के दिन वो एक दिन ही सही जिम चले जाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। एंड या फिर किसी ऐसे दोस्त से जिससे काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, उससे भी बात कर लेते हैं कुछ दिन। तो संडे जो है ना, उसका कुछ एक कोई एक फिक्स रूटीन नहीं है कि हमें ये निर्धारित चीज़ें ही करनी है। जो भी हमारे सामने आए, जो हमें उस वक्त उस समय पर करने में मज़ा आए, बस वो हम कर देते हैं। रविवार आता है और कहता है कि लो भाई अब बताओ क्या करना है, है ना? वो कभी आपके लिए कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन सेट करके नहीं आता, बस आ जाता है। एंड अच्छा लगता है जब संडे को आप अपनी मॉम के साथ

बैठ कर नाश्ता करते हैं या फिर अपने डैड से पुरानी बातें करते हैं, उनके ज़माने की बातें, या फिर अपने घर में आसपास अगर खुद के आपके बच्चे हैं या आपके घर के आसपास है उनके साथ खेलते हैं, अपनी पसंद के गाने सुनते हैं। तो बस यही है संडे की कहानी कि हमें हम से मिला देता है। जो बाकी दिन हम दूसरों के लिए जीते हैं, अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, लेकिन संडे एक ऐसा दिन है जो हमें ये कहता है कि नहीं यार, एक दिन तो बस अब तुझे खुद को देना है, तू है तो सब कुछ है। अगर तूने खुद को समय नहीं दिया तो फिर तूने क्या ही किया। हाँ जी बिल्कुल, संडे ही है जो हमें याद दिलाता है कि तू है तो सब कुछ है, क्योंकि तूने अगर खुद को समय नहीं दिया तो तू अपने साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी करेगा। एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी संडे टू यू। नमस्ते भारत, मैं हूँ आरजे नम्रता और ये है 107.1 FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours. Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: म्यूजिकली यार्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 एफएम रेनबो एंड नमस्ते भारत जारी है अभी इसी वक्त. और नमस्ते भारत में आज हम बात कर रहे हैं मेरा दिल मेरी बातें में संडे के बारे में. भाई संडे कितना खास होता है, कितना अपना होता है, क्योंकि ये याद दिलाता है हमें कि तुम्हें खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं दोगे तो भले ही तुम अपने करियर में, अपनी लाइफ में, सब किसी जिस भी फील्ड में हैं आप, जिस भी प्रोफेशन में आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जीने में आप बहुत पीछे रह जाएंगे. पर बहुत से लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं संडे में, संडे के दिन. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत कमाल के होते हैं एंड जिनको मैं अक्सर देखती हूँ, उनमें से मैं भी एक हूँ, कि संडे के दिन ना वो सारे रुके हुए काम करते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं. एंड स्पेशली ये काम उनके खुद के पर्सनल नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं होता कि उन्हें सोना होता है, आराम करना होता है, या फिर कुछ ऐसा करना होता है जो वो करना चाहते हैं, है ना. जैसे कोई ख़ास म्यूज़िक सुनना हो या फिर कहीं किसी खास जगह पर जाना हो अपने आप को पैम्पर करने के लिए, नॉट ऑल दैट, बट ऐसे काम जो वो बाकी दिनों में नहीं कर पाते, जिनमें से एक है वो शायद आप भी रिलेट कर पाएँ, होता है सफाई करना. हमारे जो वार्डरोब्स होते हैं, जहां हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें रखते हैं, उसे साफ करना. एंड कुछ लोगों के लिए ना एक शौक भी होता है कि भाई हमारी जो अलमारी है, हमारा जो वार्डरोब है, वो हमेशा सजा सवरा, बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल सही सटीक तरीके से हो. इसमें कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो जो फालतू हैं या फिर यहाँ वहाँ रखी गई हैं. मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि संडे का दिन आता है तो वो घूमने फिरने या फिर खुद को समय देने से ज़्यादा इस चीज़ पर गौर करते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर जगह की अपने घर में सफाई करनी है, फिर चाहे वो उनकी एक पर्सनल टेबल ही क्यों ना हो, एक स्टडी टेबल या फिर जो उनकी वर्किंग डेस्क होती है वो ही क्यों ना, है ना. आप भी मुझे बताइए कि क्या आप भी ऐसा करते हैं. 8657661071 इस नंबर पर मुझे मैसेज करके बताइए कि क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो संडे को के दिन को अपनी वो खास जगह की सफाई करने के लिए रखते हैं. जगह से मेरा मतलब है घर की किसी जगह से. उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में एंजॉय कीजिए इस गाने को और बने रहिए मेरे साथ. मैं हूँ आरजे नम्रता और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत.

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इस फिल्म से था ये गाना. और क्या खूब गाना है यार. आई मस्ट से कि जब ये गाना आया था मार्केट में, आई मीन जब हमने इसे सुनना शुरू किया था पहली बार, तो वाकई में पहली बार सुनकर ही ऐसा लगा था यार कितना खूबसूरत गाना है. और अब भी लगता है कि बस कल ही जैसे रिलीज हुआ हो, है ना. वेल, मैंने आप सभी से पूछा था कि आपका संडे जो है वो कैसा होता है, एंड क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने संडे को सफाई करते करते यू नो स्पेंड करते हैं. बहुत से ऐसे लोगों की आदत होती है. वेल, आई मस्ट ज्वाइन यू, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो महीने का कम से कम एक संडे तो अपने घर की या फिर अपने किसी एक घर के कोने की सफाई करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो भी ज़रूरी है. एंड विजेंद्र खटोल जी अकोला से मैसेज करते हैं कि वो भी ये करते हैं, उन्हें भी अपने घर की खासकर किसी एक जगह की पर्टिकुलरली सफाई करना बहुत पसंद है, संडे को वो ये ज़रूर करते हैं. शुभदा कहती हैं कि संडे रिलैक्सिंग होता है, परिवार के साथ इंजॉय करना उन्हें पसंद है. एंड इसके अलावा बहुत से मैसेज आए हैं. यशवंत आड़मुटे जी कहते हैं कि संडे के दिन वो उनके घर का जो मंदिर है उसे साफ करते हैं. हाँ जी, ये भी बहुत ज़रूरी है. एंड इसके अलावा पंकज महोर जी का मैसेज आया है. आकांक्षा मनोज सिन्हा मुझे मैसेज करती हैं अहमदाबाद से. अंजू जी हैं, डॉक्टर अंजू, अंधेरी ईस्ट से. एंड वो कहती हैं कि सूर्य रवि, मतलब रवि हम सूर्य भगवान को भी कहते हैं, संडे को कहते हैं, तो रविवार का मतलब होता है कि सूर्य देवता की पूजा की जाए. हाँ जी, ये भी बहुत ज़रूरी है. प्रणव शिंदे का मैसेज आया है, कहते हैं छुट्टी के दिन आप उनका जो दिन है उन्हें बहुत सुकून मिलता है संडे के दिन, छुट्टी के दिन. ममता महेश भटनागर ने, भाटकर जी ने मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है. पूनम सोइटकर का भी मैसेज मैं देख पा रही हूँ, विलेपाले से उन्होंने मैसेज किया है. एंड बाबा ने दादर से मैसेज किया है. इसके अलावा पठान समीर ने मुझे वाल सावंगी महाराष्ट्र से मैसेज किया है, क्या बात है. शुभ लक्ष्मी जी मुझे मैसेज कर रही हैं. दत्ता केदार पंडरपुर से मैसेज करते हैं. दत्तात्रेय आड़त वेलापुर से मैसेज कर रहे हैं. महेश भाटकर सांताक्रूज से मैसेज करते हैं. सूर्यकांत कुम्हार सवाड़े जी ने मुझे मैसेज किया है. फिरोज सिंह सिघनपुरिया का मैसेज भी मैं देख पा रही हूँ. अक्षय साखरे भी जुड़े हैं शुरू से. एंड इसके अलावा हितेंद्र दास का मुझे सबसे पहले मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग लिखकर भेजा था उन्होंने. श्रीधर बोराजकर जी का भी मैसेज मैं देख पा रही हूँ. महेश बोहारा जी का मैसेज ऑल्सो आई कैन सी. एंड राकेश माथुर भी हैं. प्रमोद चिंचोलकर जी का मैसेज भी इस वक्त मेरे सामने है. प्रमोद कारखानीस जी का मैसेज भी मैं देख रही हूँ. चेतन कुमार, रजनीकांत पाटिल वाडवान से, विश्वास चांदुरकर, आर्यन सोमवंशी जलगांव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी का इतने खूबसूरत मैसेजेस मुझ तक पहुँचाने के लिए. कुछ लोगों ने मुझे जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं. हाँ जी, आप सभी को भी बिलेटेड जन्माष्टमी और आने वाले फेस्टिवल सीजन की भी मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. बहुत जल्द आपसे मैं मिलने वाली हूँ. वेल, इस शो का ये आखिरी गाना मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ. अगले शो में बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं. अपना ख्याल रखिए, फेस्टिव सीजन धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए, अपने अपना ख्याल रखिए सबसे पहले. एंड यस, जब भी आपको छुट्टी मिले, मौका मिले, संडे मिले, तो संडे को सेलिब्रेट कीजिए खुद के लिए, खुद के साथ. केके और सुनीति चौहान की आवाज़ में आखिरी गाना आपके लिए. बनी रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में आपसे जुड़ने वाले हैं आरजे खेत. मैं हूँ आरजे नम्रता, आपसे लेती हूँ विदा. बाय बाय.

0: see.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर इस वक्त के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री कल पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। मुंबई के धारावी में आज तड़के एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से 4 लोग घायल हो गए। यह घटना सायन धारावी लिंक रोड स्थित राजीव गांधी नगर में हुई। चारों घायलों को पुलिस वाहन से सायन अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल्स में आज उनका मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। और इसी के साथ इस वक्त के समाचार समाप्त होते हैं।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम हमेशा बात करते हैं उन हस्तियों की, उन घटनाओं की, उस शख्सियत की जो किसी ना किसी प्रकार हमें प्रेरित करती है और हमें एक नया पक्ष जानने के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर देती है, हमें कुछ पढ़ने का अवसर देती है, कुछ जानने का अवसर देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, हमेशा ही प्रेरित करते हैं, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में अभिनेता उत्तम कुमार का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तम कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, तो किस प्रकार से उन्होंने समाज को कुछ दिया और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू क्या थे, आज इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं, संजीव श्रीवास्तव हैं, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजीव जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदीप जी, आपका स्वागत।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत।
0: तो आइए श्रोताओं, अब सबसे

0: पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता उत्तम कुमार का उल्लेख किया है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन।
0: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर के लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी। तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
2: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है, मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वह बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आमतौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार। लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत एक उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे। इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी, आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखें अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी

0: कई सारी फिल्में हैं, दो तीन फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में तो दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी,
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं। तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं, तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं, तो अपने नाम को वो बिल्कुल सार्थक करते हैं। उत्तम कुमार
1: जी
0: सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है।
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम जी, बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायक या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी,
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसी लिए बनाई, उनको ध्यान में रखकर
1: जी,
2: तो वो इस तरह का उनका वो था। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया, ये बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले। उसके बाद उनको इस तरह के सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में जो 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की, तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं, तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें का नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे इस तरह की फिल्म बनाई, एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कलकत्ता से, आप सो कोलकाता बोले, आप कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार को मिलती है शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों में जो भी नहीं, और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शर्मिला टैगोर के साथ। तो ये जो वो जो नायक का वो जो था, इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले, और फिल्म जगत के भी अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए। अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता, ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा भी नहीं फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए। बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है, और आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह वो निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पे ध्यान देते थे, वही खूबियां उत्तम कुमार में। उत्तम कुमार ने देखिए निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई, निर्माता निर्देशक भी इतने की, और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया, और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है, और उनकी अलग वो थी, और मुझे वो दृश्य में भी तक याद है जब 1980 में उनका निधन हुआ, तो इतना सैलाब था, जन सैलाब उबड़ा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जन सैलाब बहुत किसी अभिनेता के रूप में शायद कभी ना देखा गया। बाद में तो हम चाहे नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस समय तो कोई था ही नहीं, फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई उनकी फिल्म, कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था। लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अनछुए पहलू थे, और अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो तुरंत वहां पहुंचे। जी, यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
2: देखिए, उनके मेरे को कई गाने पसंद है, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म
1: जी,
2: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी
1: जी।
2: और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहाँ इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहाँ खूब चली और उत्तम कुमार बहुत खुश थे देखकर कि मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली मनाई। और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई, बंगला में भी आई, अमानुष भी ऐसी फिल्म थी। इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो वहाँ बंदी वहाँ चली यहाँ नहीं चली, लेकिन अमानुष वहाँ भी चली और यहाँ भी चली। तो उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो अमानुष का टाइटल सॉन्ग है और उसको जो इंदिवर ने लिखा है, और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
2: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द है, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है, इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा। और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर, श्रीमती टैगोर पीछे लेटी हुई है और जब गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है, लेकिन
1: और ये शब्द भी अमानुष,
2: अमानुष बना के छोड़ा, अमानुष मतलब अभी भी लोग सोचते अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति हो जो अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं
0: अमानुष। जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के, क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहाँ, क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे,
1: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे,
0: नायक की छवि से जोड़ पाएंगे, जो सत्यजीत रे ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम कुमार
2: जी का, जो है उसके अंदर एक शराबी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शराबी बन गया बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और श्रीमती टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है वो, तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं, और भी फिल्मों की कथा उन्होंने
0: लिखी,
2: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में, जो भी फिल्म आई वो कमलेश्वर ने लिखी
1: जी। तो यानी ये गीत हमें बहुत सारी कहानियां एक साथ देता है,
2: जोड़ता है।
0: मैं उसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
1: जी, बिल्कुल,
0: कि ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, और यह फिल्म बहुत पसंद की गई।
2: अब देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग रहते हैं, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी, तो ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था
0: जी।
1: तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम, लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जो घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से
0: जी,
1: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे। आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन
0: जी
1: होने वाला था, उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था
0: जी।
1: तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है
0: जी।
1: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं

0: आई 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी
1: जी।
0: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं। जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं
1: जी।
0: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे
1: जी।
0: इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से
1: जी।
0: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब
1: जी।
0: इस तरह के कई सारे काम करते थे। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित करवाते थे, उनको देते थे। और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें ऐसी है, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है
1: जी,
0: कि आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की
1: जी। और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते थे, आर्थिक मदद करते थे।
0: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे
1: जी।
0: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी
1: जी,
0: इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो 1971 की जो वार थी उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा कलेक्ट किया, उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उन्होंने कई कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी बहुत दिया
1: जी।
2: तो ये बड़ी बात थी। और दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है कि 5,000 रुपए उन्होंने उससे में दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी
1: जी। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहिए सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए और जो जिस तरह भारत ने तरक्की शुरू की उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी इस तरह की फिल्में बनाई और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, उधर कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया। जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि लोग उदास थे, निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उभारे, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें। तो बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा अभिनेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया, विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से या अपनी, और सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से पाथेर पंचाली से ही उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था।
1: तो
2: अपनी पहली फिल्म से हो गई तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी, लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने। की अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना, हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग

0: हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाएं, सब जगह देखे जाएं। तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है तो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा, जो सबसे ज्यादा फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमत्ता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठी उनके पैरों में जाकर बैठ कर उनको फूल दिया, सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था, तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो इतनी सुपरहिट हो गई, और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी, तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। वैजयंती माला जी से मेरी कितनी बार बात होती है, तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती हैं कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया, तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई, वैजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडियाकर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा जी, शताब्दी का
1: जी, इस अर्ध शताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी,
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
1: जी
2: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम
1: जी,
2: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना
1: जी,
2: उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया
1: जी।
2: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में। इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी, और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं जैसे कि अग्नि परीक्षा, जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं।

0: अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था, छोटी सी मुलाकात, जिसमें वो खुद ही थे
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा दूसरी फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला में बनी,
2: आशापूर देवी के उस पर थी।
0: हाँ
1: जी,
0: उपन्यास जी, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लाल पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही क्लासिक फिल्म है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी
1: जी।
0: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो फिल्म, जिसका नाम चुपके चुपके है, और धर्मेंद्र उसमें
1: परिमल त्रिपाठी का किरदार,
0: परिमल त्रिपाठी का रोल में आते हैं, और धर्मेंद्र की वो बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में अगर हम उनकी हम पांच पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं तो उसमें चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में, हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से
1: जी।
0: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं
1: जी।
0: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम कुमार जी ने निभाया था,
1: और अंगूर
0: अंगूर गुलजार साहब की अंगूर वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये देखते हैं
2: शेक्सपियर के उस पे थी
1: जी, कॉमेडी ऑफ एरर्स
2: जी, लेकिन उसको बंगला में बहुत चली वो।
0: इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर से बहुत सारी कहानियां हैं
1: जी।
0: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सावंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
2: वैसे धोती कुर्ता बांधा, जैसे उसे बांधा
0: जी, वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और आयुष खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने एक भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए उस वक्त, जिस समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था
1: जी।
2: और इसका ये बता दूं, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के
0: जी,
2: वो भी हुगली में वही पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहाँ वो किया गया। और शिविर टैगोर बता रही थी कि वहाँ इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखा रहा था, बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है। कहते हमने उसमें भी काम किया, पांच दिन हमने इस गाने को शूट किया वहाँ पर।
1: ये उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था उस समय।
0: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भाव को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
1: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है, एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
2: देखिए, पीछे कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा
1: जी,
2: तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चतुर्थी जैसे आप जानते हैं, दोनों बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे, 5 साल छोटे थे इनसे
1: जी।
2: और उन्होंने, वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है, तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो की फिल्म थी 1948 में दृष्टिदान
1: जी,
2: दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से
1: जी,
2: तो वो फिल्म नहीं चली। तो उनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही, उसके बाद जंजीर से चले वो, 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, उससे चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल इन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की, उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था
1: जी।
2: आप देखिए, इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो है सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह महानायक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, हॉलीवुड की नकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, जब जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत भी इधर भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी जुड़े रहे तो दोनों सिनेमा से, और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे, इनके पोते भी जो है उत्तम कुमार के, वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है। कि बाकी और एक बेटा था, उनकी डेथ होगी बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था, वो इनके जो फादर थे, हमारे सिनेमा था इंदिरा सिनेमा, उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे।

0: दादा साहब फालके नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार। उत्तम कुमार कौन है? नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है, क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगौर में ज्यादा है, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने
1: जी।
0: और जैसे
1: बताया और संजीव कुमार जी से चेहरा मिलता था, तो देखिए जो आधी फिल्म है
0: वो भी कमलेश्वर ने लिखी थी
1: जी।
0: और कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले उत्तम कुमार को। अब आपने बात की मुझे याद आ गया, जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। आंधी फिल्म में 1973 में जब ये फिल्म हुई तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें।
1: सुचित्रा
0: सेन इसके अंदर थी, सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह
1: जी।
0: तो लेकिन आप देखिए वो आंधी फिल्म है वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और शिल्पा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं, क्योंकि शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही। तो उनकी दो अभिनेत्रियां तो उनकी बहुत ज्यादा रही जो इनकी इस तरह, बाकी सुप्रिया देवी जो उनके साथ बाद में जीवन में आई, पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई। 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का, फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रही। तो इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया दूसरे ने ज्यादा कमाया तीसरे ने कम कमाया, तो इस तरह आता था कि बहुत आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में रंगमंच में बहुत काम किया, रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों ने किया। हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं, कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया,
1: और उस समय रंगमंच जन जागरण का कार्य करता था।
0: जेनिफर जो उनकी पत्नी रही वो भी उनको शशि कपूर को वहीं मिली, तो वो थिएटर करती थी उन्होंने अपने फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी। तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, तो जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रंगमंच के अंदर। उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहां रहा जिसने इतनी फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे। तो इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है खासतौर, कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा की
1: राजधानी कहा जाता था। जी बिल्कुल।
2: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे
1: जी।
2: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ जो मैं चाहता हूँ उसे मेंशन करूँ, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
1: जी।
2: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी।
2: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी। तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव
1: जी,
2: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने, उन सबको उन्होंने मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है। और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है, कि सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है। और खासतौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है।
0: राज कपूर तो ऐसे का परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
1: जी,
0: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने वो सॉफ्ट पावर की चर्चा
1: बिल्कुल कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
0: राज कपूर भी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर, दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े जिनको बुलाया जाता है, दोनों ने अभी सत्यजीत रे उस तरह के, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही सकते हैं, उनकी अब जन्म शताब्दी देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उत्तम कुमार की वहाँ संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और

0: ओपी नैयर है, उनकी जन्म शताब्दी मनाई है। अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राजकपूर, देवानंद, इन सबकी हम जो त्रिमूर्ति रही, राजकपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना। तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना, और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका अतीत, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाकर उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया कि हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
1: जी। और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे। और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा मिलती है और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है
1: जी।
2: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, उसका सामाजिक काम करते हुए
1: जी।
2: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: इस तरह की कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10-20-25 ही होती है, जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है
1: जी।
2: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेन ज़ी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
1: जी।
2: ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी
1: जी। तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
2: बिल्कुल, बिल्कुल
1: जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
0: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है
1: जी।
0: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है
1: जी।
0: यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअली लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते हैं।
1: लेकिन बहुत
0: हमने क्या
1: किया,
0: देखिए हमने जिस दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में कि जब ये बहुत आप किसी से कोई आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 पे उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जो मेरे गुरु रहे हम तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से, तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको जरूर कल दें, परसों दें, तरसों दें, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए तभी कभी दीजिए, लेकिन पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने, लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, ताराचरण बड़ियाती से मिलता था, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, उस समय के जितने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था हमसे। वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। ताराचरण बड़ियाती जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसके स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा बताइए कैसे हैं। उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए, जनपद पे गाड़ी रोक कर जब हमने रिकॉर्डिंग कर कराया, आप गाने सुनी है। तो उस समय फिल्म समीक्षा की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सराह ली जाती थी कि आप जानते हैं, सिनेमा देखते हैं, लोगों की नफी पहचानते हैं, तो आप बताइए क्या है। हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं नहीं क्या फिल्म चित्रा बनाया, चलेगी नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो महावीर बड़जातिया थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे, क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे पास फोन आया, मैं कहा चिंता मत कीजिए, ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं तो कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म की ठीक बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें, ये नहीं कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए। हम आपके कौन के लिए, सब लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया, इसने कहा था ऐसे होगा, पोस्टर दिखाया कि ये होगा। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे, गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचें हवाई हो जाए एकदम सब कुछ और हम ये बन जाएं, पॉपुलर हो जाएं, बहुत सारे पैसे कमा लें। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इसलिए आज भी हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, हम भी मानते हैं कि हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करें, तो हमें अच्छा लगता है कि आज भी हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करते हैं कि जैसे प्रदीप सदा ने लिखा है या कहा है तो वो सच होगा। तो ये चीज आज की फिल्म जो बनना चाहते हैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए, हवा हवाई बातें ऐसे ना करें, कोई भी अपना जो भी लिखे हैं, जो भी बोले हैं, जो भी करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से करें, और क्योंकि जो जैसी फिल्म लग रही है उस ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें, ये सबसे मैं चाहूंगा। ईमानदारी कर्मठता से करें, परिश्रम से करें, दिमाग लगाएं और फिल्मों के साथ अच्छी तुलना करें, ये नहीं कि आपने लिख दिया तो अगर वो करेंगे तो वो भी उनकी अच्छी फिल्म समीक्षक के रूप में अच्छी पहचान।
1: यानी फिल्म अध्ययन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है, और आपकी जो लेखनी है या आपके जो शब्द हैं उनमें गंभीरता भी बनी रहे।
0: लोग अपना देखने जाते हैं
1: जी।
0: मैंने सबसे पहले टीवी के अंदर जो फिल्म आती थी संडे को, मैं सबसे पहले नंबर टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका रिव्यू करना शुरू किया, आज की टीवी फिल्म और टाइम्स ऑफ इंडिया में टू डेज टेली फिल्म, तो उसमें बताता शाम को जो, क्योंकि एक ही मनोरंजन का साधन होता था, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि लोग शाम को फिल्म देखें या ना देखें, तो वो इतना पॉपुलर हुआ लोग कॉलम, तो लोग कहते थे कि हम उसको देख के प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपने लिखा है आज ये फिल्म देखें या बाजार में परिवार के साथ घूमने जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं। तो वो जो हमने दौर देखा है, हम उसको आज तक उनकी जो दर्शकों की भावना थी तो उसको मैं सर झुकाता हूँ हमेशा, इतना सम्मान दिया, तो आज भी मैं उसी लकीर पर चल रहा हूँ
1: जी। यानी अपने काम के लिए ईमानदार भी रहना है और जो सामाजिक दायित्व है उसे भी समझना है, और ये समझ बनी रही है, इसीलिए फिल्म से जुड़े हुए लेखन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है, और पुरस्कार विजेता जब यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, संजीव जी चलते चलते एक तो आपकी पसंद का गाना और हमारे श्रोताओं के लिए आपकी कोई सलाह।
2: श्रोताओं के लिए सलाह किस मायने में, फिल्म समीक्षा के बारे में? अभी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे दिया इस बारे में कि फिल्म समीक्षक जो भी नए आ रहे हैं और फिल्में देख कर कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए उसमें बहुत कुछ टिप्स है, लेकिन एक दो बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि जब फिल्म आप देखते हैं, कोई भी नया युवा अगर देख रहा है, मैं भी अपने आप को युवा ही मानता हूँ, है ना, तो पर्दे पे दिखाई जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जो भी चीजें, वो केवल खेल तमाशा नहीं है
1: जी।
2: सिनेमा के भीतर सारे विषय हैं, राजनीति भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है, तमाम कलाओं का संगम है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है, युवा है, सब कुछ है, महिला है, महिला मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सब कुछ है। आप उसको केवल एक मत समझिए कि केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और गाने देख रहे हैं, केवल उस दृष्टि से सिनेमा को कभी मत देखिए। हाँ, उस नजरिए की फिल्म में कुछ आती है वह एक अलग मसला है। आज तो सिनेमा पर देखिए पीएचडी हो रही है, विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज हैं, पढ़ाई हो रही है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है कई सालों से, तो ये इसलिए मिल रहा है और ये इसलिए पीएचडी मिल रही है क्योंकि सिनेमा को एक गंभीर विषय माना गया गया है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है सिनेमा। तो फिल्म अगर हम देखते हैं, किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखें? सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म को समझना, फिल्म को हम समझ कितना पाए हैं। अगर फिल्म हमें पसंद आई तो क्या हम ये लिख दें कि मुझे पसंद नहीं आई? क्या यह समीक्षा है? अगर हमें पसंद आ गई तो हम क्या ये लिखते हैं कि हमें पसंद आ गई? यह क्या यह समीक्षा है?

0: समीक्षा एक एजुकेशनल पार्ट है
1: जी।
0: फिल्म समीक्षा जो है एक एजुकेशनल पार्ट है, जैसा कि प्रदीप सर ने अभी बताया था कि उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड होते थे कि फिल्म देखने जाते थे। पहली सूचना आप देते हैं, फिल्म की गुणवत्ता के बारे में आप उसमें बताते हैं, हाँ ठीक है फिल्म में खामियां हैं, अभिनय खराब है, कहानी खराब है, उसका भी जिक्र करिए, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए कि ये फिल्म कैसी है। दर्शकों के लिए, दर्शकों को पहले आप बताइए उस फिल्म में क्या है, और खामियां है तो बताइए, फिल्म के संदर्भ में बात करिए, वो कहानी के संदर्भ में है। ये नहीं कि अगर लव स्टोरी है तो उसकी तुलना हम वॉर मूवी से कर दें, और वॉर मूवी है तो हम लव स्टोरी की अपेक्षा उसमें डालें
1: जी।
0: ऐसा नहीं होता, ऐसी समीक्षा कभी भी मानक नहीं मानी जाती
1: जी। तो सही और सटीक शब्दों में दोनों पक्ष जो हैं वो सामने रखे जाएं, उसे फिल्म समीक्षा हम कहेंगे कि दर्शकों के नजरिए से भी आपने लिखा है और साथ ही जो फिल्म निर्माता है उनके नजरिए से भी जी। और अब चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत,
0: आनंद आश्रम का एक गाना है
1: जी,
0: सारा प्यार तुम्हारा बांध लिया है आंचल में
1: जी।
0: ये बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी।
0: और मुझे लगता है कि चलते चलते आप इस गाने को अगर सुनाए तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा
1: जी। ठीक है, तो हम सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हमारे ऐसे दो विशेषज्ञ जिनके माध्यम से हमने उत्तम कुमार जो अभिनेता थे उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को जाना, हमने जो समसामयिकता रही उनके अभिनय की उस दौर की उसे पहचाना, और फिल्म लेखन की गंभीरता क्या है, वो कैसे समाज पर अपना असर डालता है, किस तरह से करियर के साथ साथ ये एक जिम्मेदारी भी है, अपने दोनों विशेषज्ञों के माध्यम से हमने ये समझा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव, जो कि एक लेखक भी हैं और स्वर्ण कमल पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में आपको प्रदान किया जा रहा है इस बार का, और साथ ही प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 50 वर्षों से आप अलग अलग शैलियों में अलग अलग माध्यमों में लगातार सक्रिय रहे हैं, आप स्तंभकार रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं, विभिन्न चैनल्स में हम आपको देखते हैं, पैनलिस्ट के तौर पर, समीक्षक के तौर पर, जाने माने फिल्म समीक्षक भी आप हैं, और दोनों का संदेश यही कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब हम कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, तो जो सिनेमा के पात्र हैं वो भी हम में से ही निकले हुए हैं, और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो अभिनय हम पर्दे पर देख रहे हैं उसके इतर जाकर हम उस व्यक्ति को भी समझने का प्रयास करें जो उस पात्र को जीवंत कर रहा है पर्दे पर। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमने आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की अभिनेता उत्तम कुमार को। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से, और साथ ही हमारे दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: पोस्ट बॉक्स 111 तो आपने सुना, अब आप सुनने वाले हैं म्यूजिक कैफे ऑन 107.1 FM रेनबो आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो से। और आज सबसे पहला जो संगीत, या यूं कहूं कि संगीत के साथ में जो बोल आपके समक्ष आने वाले हैं, वो है श्रुति पाठक और दिव्या कुमार की आवाज़ में। और म्यूज़िक कैफे नाम के खूबसूरत से शो की शुरुआत हो चुकी है। जब भी म्यूज़िक कैफे का नाम सुनते हैं, मन में आता है कि बस एक कॉफ़ी पकड़ी और बैठ गए आप कॉफ़ी में अपना लैपटॉप लेके, और बस आप अपने जो हैं मनपसंद जो हैं या तो काम को कर रहे हैं और पीछे मध्यम मध्यम गाने चल रहे हैं बस। अब आज की तारीख में कुछ कैफ़े के अंदर एक बेल भी लगा दी गई है कि आप एक घंटे के अंदर अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो बेहतर बात है, नहीं तो आप एक घंटे के बाद में उस कैफ़े में नहीं बैठ सकते। यानी कि पहले ऐसा होता था कि आपने कॉफ़ी ली और भाई साहब जो है दो दो तीन तीन घंटे अपने काम करते हुए रहे और चाय चुस्कियाँ या फिर कॉफ़ी जो है पीते रहे, और अपने काम को करते करते आपने अपना पूरा दिन उसी कैफ़े में काट दिया। आपका कैफ़े एक तरह से आपका ऑफिस होता था, लेकिन अब ये चीज़ हो चुकी है। फिलहाल इसी के साथ मैं एक बड़ा ही बेहतरीन सा गीत आपके समक्ष में लेकर आ रहा हूँ, और इसके बाद में वापस आएंगे और चर्चाएं करेंगे कि आपकी म्यूज़िक कैफे से जुड़ी हुई वो कौन सी खूबसूरत याद है या वो कौन सा खूबसूरत दिन है जो आप जीना चाहते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। 12:15 हो चुके हैं, या यूं कहें कि 12:15, और टिक टिक करती हुई घड़ी की का इशारा करिए कि अगला ट्रैक आपके समक्ष हाजिर किया जाए। लेकिन उससे पहले कैफे की हम बातें कर रहे थे। कैफे के अंदर कुछ पल जब आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कोशिश करते हो कि जो आपको पॉकेट मनी मिली हो उसमें से कुछ पैसे बचा कर आप अपनी फर्स्ट डेट पर जाएँ या फिर अपने क्रश के साथ कहीं घूमने जाएँ और कैफे में आप कॉफ़ी की जूस के लिए। वैसे आज की तारीख में जो है सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही अच्छा ट्रेंड चल गया है, या यूं कोई एक ऐसा ट्रेंड जो दिखावटी है थोड़ा सा, लेकिन अगर उससे आपको खुशी मिलती है, आपका डोपामिन बढ़ता है तो क्या बुराई है। जिसमें ऐसा होता है कि आप खाने से पहले या फिर कॉफ़ी पीने से पहले उसकी तस्वीर खींच कर अपनी स्टोरी पर लगाते हो और उस रेस्टोरेंट को टैग करते हो और दिखाते हो कि आपने आज कौन सी कॉफ़ी पी। और जेन ज़ी के अंदर जो ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन वक्त के साथ मैं इतना कहूँगा कि अगर आप एक रिच चेहरा से जो है बिलोंग करते हैं, क्योंकि रिच चेहरा तो वही होता है जब जेब के अंदर पैसे हों आपके, क्योंकि नहीं तो आज की तारीख में जब कॉफ़ी का बिल सामने आता है तो आप थोड़े से सकपका जाते हो कि ये कॉफ़ी का बिल है या आपके पूरे महीने का पॉकेट मनी का वो बिल जो आपकी पॉकेट से कट गया है। वेल, अगला ट्रैक आपके समक्ष में हाजिर करूं उससे पहले बात करना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमने देखा है कि कल कितनी खूबसूरत खूबसूरत जो है दही हांडी जगह जगह पर जो है वो बड़ा ही जोश से मनाई गई हैं। और अभी बप्पा की जो मूर्तियों का मैं कह सकता हूं कि एक जोश समावेश जो है पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। और इस बार जो मूर्तियां बन रही हैं उसमें आप जानते हैं सबसे ऊंची जो इमारत है, यानी कि वो मूर्ति की इमारत जो वो कहाँ की है, अंधेरी चा राजा की या फिर लालबाग का राजा की या फिर किसी दूसरी जगह की, बात करेंगे ठीक एक बड़े ही खूबसूरत से गीत के बाद। और ये जो गीत है भाई साहब।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Welcome back, dosto. फिलहाल आपसे मैंने बातों बातों में पूछा था कि आज हम सभी जो हैं देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं जो हैं गणपति बप्पा की सब जगह देखने को हमें मिल रही हैं और एक होड़ लगी हुई है कि इस बार की जो प्रतिमाएं हैं उनमें सबसे ऊंची प्रतिमा जो है गणपति बप्पा की वो कहाँ की होगी। तो बताया जा रहा है कि साकीनाका के महाराज की 42 फीट की होगी सबसे ऊंची प्रतिमा जो पूरे मुंबई में होगी और 22 फीट से ऊंची प्रतिमाएं जो होंगी वो तकरीबन 100 प्रतिमाएं होंगी इस बार मुंबई में। हम सभी जानते हैं कुछ दिनों पहले भुलेश्वर के महाराजा की प्रतिमा को ले जाते वक्त एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो सावधानी सबसे ज़रूरी है। वेल, इसी के साथ साथ मैं आपसे आज बात कर रहा था कि कैफ़े के अंदर जब हम बैठते हैं तो जो ख्याल 90s में आते थे, 2000s में आते थे और अब 2026 आ गया है, तो क्या पैटर्न बदला है या पैटर्न बिल्कुल सेम है? ये तो पता है कि रेट कार्ड बदल चुका है पर लाइफस्टाइल भी क्या बदल चुका है। मुझे तो यूँ लगता है कि जो उस टाइम में कैफ़े में बैठते होंगे शायद अब उनके बच्चे कैफ़े में बैठते होंगे और अब शायद वो ये सोचते होंगे कि पिताजी की जेब से कितने पैसे लिए जाएं ताकि कैफ़े का खर्चा निकल जाए। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कैफ़े में काम करते हैं और सोचते हैं कि इससे कैसे पिताजी के कमर पर और बोझ ना पड़े और वो वहाँ पर काम करते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 12:40 हो चुके हैं और म्यूजिक कैफे के अंदर आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। और साथ ही म्यूजिक कैफे के बारे में आपसे बात कर रहा था। आज के तारीख में म्यूजिक कैफे जो है, इसमें मैं कहूँगा कैफे के अंदर आज की तारीख में कॉमेडी के जो है कुछ पंच लाइन्स तो ऐड होने लगे हैं, और वो कॉमेडी के पंच लाइन्स कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ ही मिलते हैं। यानी कि स्टैंड अप शोज जो हैं वो कैफ़े के अंदर चलते हैं, उसमें कुछ स्टैंड अप्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जब आप परफॉर्म करते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी कला में निखार आता रहता है, तो आप फिर जो है नब्ज़ पकड़ लेते हैं लोगों की, किस मोड़ पर, किस शब्द पर उन्हें हंसी आएगी। लेकिन शुरुआती दौर में बड़ा ही मुश्किल होता है ना। मान के चलिए आप भी किसी कैफ़े के अंदर बैठे हैं और वहाँ पर ओपन माइक चल रहा है, जो आज की तारीख में ट्रेंड चल रहा है, या यूँ कहिए कि अब तो काफ़ी पुराना भी हो गया है ये ओपन माइक का सिस्टम, लेकिन अभी भी बरकरार है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कई सारे नए कॉमेडियंस आ रहे हैं। लेकिन जब शुरू के अंदर भाई साहब आप माइक पकड़ते हो, या फिर यूँ कहूँगी दूसरी तरफ आप बैठे हो कि कॉफ़ी पी रहे हो और सामने जो है एक बंदा हंसाने की कोशिश कर रहा है, और भाई साहब आपके सर में दर्द हो गया है, क्योंकि वो बेचारा तो नया है, वो तो अपनी तरह से कोशिश कर रहा है आपको हंसाने की, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी कॉफ़ी इसलिए खरीदी थी कि कुछ पल सुकून के बिता पाऊँ, लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती का झेलना पड़ रहा है। और ऊपर से अगर पीछे से कोई ये बोल दे वंस मोर, तो भाई साहब फिर वो कॉफ़ी जो है दुगनी महंगी पड़ जाती है कि नहीं। अगली आवाज़ जो है शफाकत अमानत अली की है, और साथ में है शंकर महादेवन। मितवा नाम का खूबसूरत सा ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है शाहरुख खान साहब की फिल्म से, जिसका नाम आपको बताना होगा कि कौन सी फिल्म का गाना है। वैसे तो बहुत ही आसान है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा 8657661071, यानी कि 8657701 से पहले आपको 66 लगाना। आपने भी कहा होगा कि क्या कंफ्यूजिंग नंबर है, सिंपल है 8657661071, यानी कि 8657661071 हमारा व्हाट्सएप नंबर। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है। अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी भी तेज़ है और आप इस गाने को पहले सुन चुके हैं और किंग खान के फैन हैं,

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 12:00 ठीक 50 मिनट हो चुके हैं और शो अपने अंतिम पड़ाव पर है। काफ़ी सारे लोगों का बिल्कुल सही जवाब आया है, कुछ लोगों ने गूगल भैया का जो है रास्ता इख्तियार किया है और रास्ते के साथ ही भेज भी दिया है कि नाम बस एक बार रेडियो बस मिल जाए दिमाग का एक और टटोले। और कुछ लोगों ने जनरली जो है शायद इसका जवाब दिया है जो शायद उस एरा से बिलोंग करते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। मैं बात करूँ सोनू की, अमित की, राहुल की और भगत की और नरेंद्र की और पारुल की, इन सब ने जो है अलग अलग जवाब दिए हैं। मैं बात करूँ अमित की, तो अमित जो है वो ये कहते हैं कि जो है ये फिल्म जो है वो एक बहुत ही पुरानी फिल्म से है, लेकिन वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से दिल जले का गाना है ये, तो मुझे लगता है कि ये जो है बिल्कुल गलत जवाब है। इसी तरह से जो प्रिया हैं वो भी इसी बात में लिखती हैं कि उन्हें ये फिल्म जो है चांदनी से लग रहा है। मुझे लग रहा है या तो आज ये कॉमेडी सर्कस वाला जो है सीन ये रेडियो पर चल रहा है और ये जो है इतने पॉपुलर गाने को ज़बरदस्ती जो है बता रहे हैं कि वो किसी दूसरी फिल्म से है। और इसी के साथ में कुछ लोगों का बिल्कुल सही जवाब भी आया है, जिसमें संजय दर्शन जी का नाम है और साथ में है सोनी जो विरार से इस शो को सुन रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे नामों की लिस्ट है, इन सारे नामों की अगर मैं लिस्ट पढ़ता हूं तो शायद अगला घंटा भी सिर्फ नामों में चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एफएम रेनबो से कनेक्ट करने का। अगला ट्रैक आ रहा है, उससे पहले मैं आपको बताऊं इस फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना। अगला ट्रैक इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक होने वाला है और ठीक इसके बाद में 1 बजे के समाचार आप सुनेंगे और उसके बाद होगा एक और खूबसूरत कारवां का आगाज़।

0: Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: म्यूजिकली और दोस्तों आपका स्वागत है। 1:05 हो चुके हैं और एक और खूबसूरत से शो का आगाज़ जो है वो हो चुका है, जिसके अंदर आज आपकी रिक्वेस्ट जो है इसमें साझा की जाएंगी, यानी कि प्ले की जाएंगी। अगर आपने आज से पहले कभी भी कोई रिक्वेस्ट एफएम रेनबो पर नहीं भेजी है तो ये शो सारे फर्स्ट टाइमर के लिए है, यानी कि आपको व्हाट्सएप पर जाना है और अपने मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपका पसंदीदा गीत कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं 80s से, और आप ये गाना किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, आपका अपना नाम ज़रूर बताइएगा। और आपको मैसेज से पहले लिखना होगा फर्स्ट टाइम एफएम रेनबो। हमारा नंबर है 8657661071।

वेलकम बैक दोस्तों, 80 के एरा से आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट में वो गाने जो हमेशा से सदा बाहर रहे हैं। सबसे पहला ट्रैक आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में शीशा हो या दिल हो, और उसके बाद लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और अब अगला ट्रैक आपके समक्ष शायद बताना चाहूँगा कि इसकी रिक्वेस्ट जो भेजी है वो भेजी है सरजू ने, और ये सॉन्ग वो पूनम के लिए प्ले करवाना चाहते हैं और बता रहे हैं कि ये उन्हीं की लाइफ से इंस्पायर है, क्योंकि ये गाना उन्होंने तब सुना था जब वो बहुत ही छोटे थे, और ये गाने में उन्हें पता नहीं ऐसे क्या मोहित किया कि वो फैन हो गए पूनम के। वेल, वो इस शो को सुन रहे हैं बैंड्रा से, और उन्होंने बहुत बड़ी चिट्ठी लिखकर भेजी है व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच सरजू। और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है। अगला जो ट्रैक आएगा इसके बाद में बप्पी लहरी साहब का आएगा, याद आ रहा है, और इसकी रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी है अनुपमा ने, और ये वो सॉन्ग जो है अपने किसी चाहने वाले के लिए सुनाना चाहती है, लेकिन उनका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया है। फिलहाल सुनते हैं दोनों ही खूबसूरत से ट्रैक्स को और उसके बाद वापस आएंगे। अगर आप भी इस शो को आज पहली बार सुन रहे हैं या फिर आपने बहुत बार सुना है लेकिन आज तक अपनी कोई भी रिक्वेस्ट FM रेनबो पर नहीं शेयर की है, तो आज आप शेयर कर सकते हैं। आपकी लिखी हुई पंक्तियाँ, आपकी लिखी हुई कविताएँ, आपकी लिखी हुई शायरी, आपके वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप मैसेज में जाइए, या फिर यूं कहूं कि अपने व्हाट्सएप नंबर में जाइए मैसेज बोर्ड में और टाइप कीजिए फर्स्ट टाइम FM रेनबो, और फिर आप कौन सा गाना 80 के दशक से सुनना चाहते हैं, और फिर आपका नाम और ये शो आप कहां से सुन रहे हैं ये भी लिख के दे सकते हैं, ताकि इस शो में आपके बारे में भी थोड़ी बात की जा सके। सुनते हैं अगला ट्रैक कर्ज फिल्म से, या यूं कहूं कि कर्ज का ट्रैक आएगा इसी लाइन में, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत जोरों से आ रही है और 5 से 7 लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन फिलहाल किशोर कुमार साहब की आवाज़ में पग बांध मीरा नाचे।

बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ

वेलकम बैक दोस्तों। अगली जो रिक्वेस्ट है हमारे पास में आई है, और रिक्वेस्ट जो है वो है महेश कुमार हजारे जी की कोल्हापुर महाराष्ट्र से, और ये गाना सुनना चाहते हैं सागर जैसी आंखों वाली, जो आपने बिल्कुल अभी सुना। और उसके बाद में इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट और किए पापा कहते हैं, तो बताना चाहूँगा एक सॉन्ग ऑलरेडी आपके नाम से प्ले हो चुका है। अगली रिक्वेस्ट आपके समक्ष आने जा रही है और ये है बप्पी दा की आवाज़ में याद आ रहा है, और इसकी रिक्वेस्ट शालू ने भेजी है, और ये रिक्वेस्ट जो है वो दिल्ली से हैं और ये शो को सुन रही हैं इस वक्त लाइव। फिलहाल सुनते हैं इस बेहतरीन से ट्रैक को, और इसके बाद में बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, बताना चाहूँगा ये आज का जो खास शो है वो उन्हीं लोगों के लिए है स्पेशली जो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं, यानी कि हमारे और भी रेगुलर लिसनर्स हैं जो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन आज का ये जो शो डेडिकेटेड है वो फर्स्ट टाइम FM रेनबो के उन लिसनर्स के लिए है जिन्होंने आज से पहले कोई भी रिक्वेस्ट अपनी साझा नहीं करी है FM रेनबो पर। सुनते हैं इस अगले खूबसूरत से गीत पर।

वेल दोस्तों, अगले जो दो ट्रैक आने वाले हैं, पहला ट्रैक होने वाला है पापा कहते हैं, इसकी रिक्वेस्ट भेजी है बिन्नी ने अमृतसर से, और ये सॉन्ग वो अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हैं। और अगला जो ट्रैक होगा वो होगा ओम शांति ओम का, और इस गाने की रिक्वेस्ट काफ़ी सारे लोगों ने की है जिनका नाम मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। नरेंद्र हैं, शालू हैं, पवन हैं, राजीव हैं, अर्जुन हैं, शुभ हैं, और इस गाने के सुनने वालों की जो फेयर लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है। तो सुनते हैं दो खूबसूरत से गीतों को और मैं आपसे लेता हूँ विदा। बहुत जल्दी आपसे वापस मुखातिब होऊंगा इसी तरह से खूबसूरत से शो लेकर जिसमें आपकी चॉइस के गाने बजते हैं और साथ में वो टॉपिक्स पे आपको बात करने को मिलती है जो आप और हमसे जुड़े हुए हैं।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही है। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
4: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम

0: विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
2: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई। 5:40 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। जान तुम पर ही दिया करते हैं, नाम तुम्हारा ही लिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं।

0: तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, रात के यानी शाम के 8 बजे तक आपके साथ रहूँगा। प्यारी प्यारी बातें होंगी और प्यारे प्यारे गीत होंगे और मेरा अंदाज, मेरा स्टाइल तो आप जानते हैं। तो चलिए कार्यक्रम लव यू जिंदगी में मेरे साथ शामिल हो जाएं और आगाज़ करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत से। रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही प्यारा अंदाज़ है उनका, हमेशा हम महसूस करते हैं पूरे दिल से। सो ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी, इसे हटा दो।
1: ये जो चिलमन है,

जी हाँ मुंबई सिटी, बचपन में हम सभी स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथों में क्या आती हैं, किताबें आती हैं, लिखने के लिए हमें कलम मिलती है, पेन मिलता है, और इस तरह हमारा पहला ताल्लुक होता है किताब से, कॉपी से, और हम लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। और लिखना पढ़ना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। पहले ऐसे कहा करते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ना लिखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ये तो एक हंसी मजाक की मस्ती की बात है। और पढ़ने के लिए स्कूल जाना और किताबों से एक रिश्ता जोड़ना, दोस्ती करना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किताबों को देखकर भागने लगते हैं, उनका मन किताबों में नहीं लगता, बल्कि कह सकते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है उसका मन किताबों से ज़्यादा मोबाइल में लगता है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों में लगता है। लेकिन इनसे ज़्यादा ज़रूरी है किताबों के करीब रहना, क्योंकि किताबों से मिलता है ज्ञान और नॉलेज। और आज किताबों की बात करना बहुत ज़रूरी है, और किताबों को पढ़ने का जो एक शौक रहना चाहिए, एक आदत रहनी चाहिए, वो अब लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज एक बहुत ही ख़ास दिन है, और इस दिन का नाम है नेशनल रीड ए बुक डे, यानी किताब पढ़ने का दिन। अब बताइए भला, किताब पढ़ने का दिन भी मनाने की नौबत आ गई है, क्योंकि किताबों से तो रिश्ता होना ही चाहिए। किताबें नहीं होंगी तो ज़िंदगी को, हमें और आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, नॉलेज कहाँ से मिलेगी। एनीवे, अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, और इसका जवाब तो आज तक किसी को मिला ही नहीं। इंसान का दिल धड़कता है और इंसान मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ता है। एनीवे, आज हम बात करें नेशनल रीड ए बुक डे की, यानी इंसान को किताब पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, आदत रहनी चाहिए, शौक रहना चाहिए। किताबों से हमें नॉलेज मिलती है और नॉलेज से हमारी ज़िंदगी संवरती है, चमकती है, हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और किताबें सभी जगह आसानी से मिल जाती है, और अब तो लोग किताबें कंप्यूटर पर या मोबाइल पर भी डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। और वैसे पुरानी से पुरानी किताब भी दुनिया में आपको मिल सकती है, और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी मिल जाती हैं। आप जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, बस आपके अंदर नॉलेज की, सीखने की, जानने की भूख होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। एक छोटा सा सवाल है मेरा, और व्हाट्सएप के ज़रिए आप इसका जवाब दें। बचपन में जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको किस सब्जेक्ट की किताब पढ़ना अच्छा लगता था, यानी कौन सी किताब पढ़ना अच्छा लगता था, या आप कॉलेज में आ गए तो तब आपको कौन सी किताब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, या कॉलेज छूटने के बाद जब आप करियर में आ गए, लाइफ में आगे बढ़ गए, तो ज़िंदगी में आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जो आपकी फेवरेट रही हो, मनपसंद रही हो। आप व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट की किताब आपको पढ़ना हमेशा पसंद रहा, या कोई पर्टिकुलर किताब ऐसी जो आपने पढ़ी और उस किताब ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसी किसी किताब का नाम आप व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी से जल्दी हमारे साथ शेयर करें। तो अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत, रफ़ी साहब की आवाज़, और ये गीत सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। गौर से सुनिएगा।

0: जी हाँ, मुंबई सिटी 5:37 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान, और बात कर रहे हैं किताबों की। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ज़्यादा किताबें नहीं थी, यानी मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। सोचिए कैसा आलम रहा होगा। आज हम कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो अचानक मोबाइल उठाते हैं, गूगल करते हैं और हमारे सामने एक पूरा पेज खुल जाता है। हम जो भी जानकारी चाहें, इन्फॉर्मेशन चाहें ले सकते हैं, यानी पूरी दुनिया की जो बुक्स हैं हम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब, सोचिए क्या हालत रही होगी जब प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। यानी कोई भी राइटर अगर कुछ लिखना चाहता है, एक यानी एक चार लाइनें भी लिखना चाहता है, तो उसे कलम उठाकर पेपर लेकर लिखना पड़ता था, और इस तरह से धीरे धीरे पूरी किताब लिखी जाती थी। और फोटोकॉपी निकालने जैसी भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। यानी अगर किसी राइटर ने एक किताब लिखी है तो उसकी दूसरी कॉपीज नहीं बनाई जा सकती। उसकी दूसरी कॉपी बनाने के लिए किसी दूसरे इंसान को पेपर कलम लेकर बैठकर उसे देखकर उसकी नकल करनी होगी, तब उसकी दूसरी कॉपी बन पाएगी। सोचिए कैसा समय था। लेकिन आज हम एक किताब की कितनी भी कॉपीज बना सकते हैं, बल्कि एक बुक को डाउनलोड करके उसकी बहुत सारी कॉपीज उसको बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग एक साथ कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। यानी कितना आसान हो गया है। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, एक बहुत अच्छी बात कही गई है, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। यानी बुरी कंपनी से अकेला रहना ज़्यादा अच्छा होता है। यानी अच्छे लोगों का साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी दोस्ती कर लें और किसी के साथ भी चल पड़ें। बेटर है कि आप अकेले रहें, और जब आप अकेले हैं तो आपके अकेलेपन को बांटने के लिए आपका सबसे अच्छा दोस्त है एक अच्छी किताब। जी हाँ, किताबें बहुत अच्छी दोस्त साबित होती हैं, और बदले में हमसे कभी कुछ भी नहीं मांगती हैं। हमेशा हमारे साथ रहती हैं, वफादार रहती हैं, और पूरी मोहब्बत के साथ इस दोस्ती के रिश्ते को निभाती हैं। तो चलिए, इतने सारे ज्ञान के बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अगला गीत।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर कार्यक्रम लव यू जिंदगी, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको किस सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था स्कूल या कॉलेज में, या इसके अलावा बाद में आपकी कोई ऐसी फेवरेट किताब रही हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताएं। तो पहला संदेश जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये लिखा है प्राची शिंदे ने मानखुर्द से। वो लिखती हैं कि अब मैं कॉलेज की किताबें पढ़ती हूँ और मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है। और मुस्तफ़ा भाई लिखते हैं कि

0: बचपन के हाथों में चांद सितारे रहने दो और चार किताबें पढ़ लिख कर ये भी हमारे जैसे हो जाएंगे नहीं तो। बहुत सरल और आपने अपने दिल की बात कही है। और अकोला से विजेंद्र घाटो लिखते हैं कि मुझे मराठी किताबें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे उनमें सुकून मिलता है। बहुत खूबसूरत संदेश है आपका। और किशोर नाइक जी ने लिखा है कि भगवत गीता उनकी पसंदीदा किताब है और इस किताब को वो अक्सर पढ़ते रहते हैं। और इस संदेश को भेजा है किशोर नाइक जी ने और संजय पंडित जी ने। राकेश माथुर जी पुणे से लिखते हैं कि उन्हें बचपन में मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ने में मज़ा आता था, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें भूगोल ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और बाद में उन्होंने कई तरह के एग्ज़ाम्स दिए और वो किताबें भी पढ़ी। और दोस्तों, संजय दर्शन लिखते हैं कि मुझे बायोपिक बहुत अच्छी लगती है, शिवाजी महाराज का चरित्र और स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़ना उन्हें बहुत पसंद है। और अंधेरी से तनुजा शर्मा लिखती हैं कि उन्हें फैशन डिज़ाइनिंग की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी सालों से फैशन डिज़ाइनिंग की किताबें पढ़ रही हैं और कुछ इसी तरह के प्रोफेशन में वो काम भी कर रही हैं। एनीवे, आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश हमारे पास आए, हम पूरे दिल से पूरी मोहब्बत से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और इसके बाद हम फिर से मिलते हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर। और मैं आपके साथ था आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। और इसी स्लॉट का आखिरी गीत आपकी नज़र करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम। जी हाँ, यानी 6:05 पर हम मिलेंगे कार्यक्रम अंदाजे बया में। और बहुत ही खूबसूरत गीत, मैं दो गीत आपको बैक टू बैक सुनवाने वाला हूँ। और बहुत ही खूबसूरत गीत है, रफ़ी साहब की आवाज़ है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मोहब्बत के साथ सुनिएगा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जी हाँ दोस्तों, 6:15 और 26 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां और यह है आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो दोस्तों, गज़लों का समय, शायरी का समय, मोहब्बत की कुछ बात करने का समय। तो चलिए आगाज़ करते हैं एक बहुत ही प्यारी गज़ल आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे कार्यक्रम अंदाजे बयां, आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। और जैसे कि मैंने पिछले स्लॉट में आपसे किताबों को लेकर एक सवाल पूछा था, तो हमारे कुछ लिसनर्स के मैसेजेस बाकी हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रमोद चिंचोलकर जी ने अकोला से लिखा है कि उन्हें जनरल साइंस की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये उनकी हॉबी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भेजी है, और इस तस्वीर में हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं, प्रकाश शिंदे जी हैं, और साथ ही साथ उस तस्वीर में मैं भी हूं। और ये बहुत समय पहले यहीं पर हमारे इस प्रिमाइसिस में, यानी ऑल इंडिया रेडियो में, इसे क्लिक किया गया था, और इसे प्रमोद चिंचोलकर जी ने व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ शेयर किया है। तो प्रमोद जी, थैंक्स अ लॉट। और ग्रांट रोड से फिरोज सिंगनपुरिया जी लिखते हैं कि उनकी फेवरेट किताबें हैं, वो हैं वर्ल्ड क्रिकेटर्स नो अबाउट क्रिकेट रूल्स, और दूसरी है 101 ईयर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज। और हमारी एक और लिसनर हैं वैदेही जी नेरुल से, उन्होंने लिखा है कि वो पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन तो नहीं है, लेकिन अनुपम खेर साहब की एक किताब है जो उन्हें बहुत पसंद है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। तो इन सभी के मैसेजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जैसा कि कुछ लिसनर्स ने लिखा है कि रविन, एक कम से कम कुछ शायरी तो होनी चाहिए, तो तुमसे मिलकर समझ आया है किसी से दिल लगाना क्या होता है, बिना वजह ही चुपचाप मुस्कुराना क्या होता है, हर लम्हा किसी के ख्वाबों में खो जाना क्या होता है, नींद से भी रूठ कर बस ख्यालों में डूब जाना क्या होता है। अगला गीत सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, 6:38 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां। चंद बहुत ही छोटे छोटे शेर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ, गौर से सुनिएगा। तुम्हारा याद आना भी कमाल होता है, तुम्हारा याद आना भी कमाल होता है, कभी तो आकर देखो हमारा क्या हाल होता है। ये शायरी भी दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते उसे शायरी में जी लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, गौर से सुनिएगा यारों। मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, तू इस कदर मौजूद है मेरे अंदर। पता नहीं मेरी किस्मत किसने लिखी है, पता नहीं मेरी किस्मत किसने लिखी है, हर चीज अधूरी छोड़ रखी है। आजमाना अपनी यारी को पतझड़ में ऐ मेरे दोस्त, आजमाना अपनी यारी को पतझड़ में ऐ मेरे दोस्त, सावन में तो हर पत्ता हरा हरा ही रहता है। एनीवे, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जी हाँ, मुंबई सिटी 6:51 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां, यानी गज़लों का शायरी का कार्यक्रम है। और इस स्लॉट में आपके साथ में आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय दर्शन ने एक बहुत ही खूबसूरत शायरी हमारे साथ शेयर की है, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कब हंसा था जो ये कहते हो कि रोना होगा, कब हंसा था जो ये कहते हो कि रोना होगा, हो रहेगा मेरी किस्मत में जो होना होगा। बहुत ही खूबसूरत शायरी है। और राकेश माथुर जी ने पुणे से और प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे ने मानखुर्द से लिखा है कि आज फिल्म अभिनेता और प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर उनकी किसी फिल्म का कोई गाना तो होना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैं ये एक बहुत ही खूबसूरत गीत प्ले कर रहा हूँ जो उन्हीं की फिल्म से है। फिल्म का नाम है पराया धन, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता जी की।

जी हाँ दोस्तों, 6:58:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंदाजे बयां। पुणे से राकेश माथुर जी ने अहमद फराज साहब की बहुत ही खूबसूरत शायरी भेजी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन हैं खराबों में मिले। राकेश माथुर जी, थैंक्स अ लॉट इतनी खूबसूरत शायरी भेजने के लिए। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंदाजे बयां, और मिलते हैं ठीक 7:10 पर रिक्वेस्ट आवर हम तुम में। सुनते रहिए एफएम रेनबो, ठीक 7 बजे सुनेंगे आप मराठी में समाचार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: जी हाँ दोस्तों, 7:10 और 58 सेकंड हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम हम तुम यानी रिक्वेस्ट आवर है। लेकिन क्या करें, समय आज बहुत ही कम है, सिर्फ 19 मिनट है हमारे पास और स्लॉट में आपके साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज़ें हैं मुकेश और कंचन की। इस प्यारे से गीत को सुनना चाहते हैं ग्रांट रोड से फिरोज सिंगनपुरिया जी और अंधेरी से तनुजा शर्मा जी और अजमेर से लाली झा, और इसी गीत की रिक्वेस्ट की है प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे ने। तो आप सभी के नाम ये प्यारा प्यारा सा गीत, क्या खूब लगती हो, गौर से सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, 7:21 और 11 सेकंड हो चुके हैं और आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है। लेकिन 7:30 पर हमारा एक विशेष स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होगा, तो हमारे पास इतना समय ही नहीं है। लेकिन मैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम बहुत ही मोहब्बत के साथ लेना चाहता हूँ। विजेंद्र घाटोल अकोला से, आकांक्षा मनोज सिन्हा, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, मुकेश कश्यप जी, राजेंद्र शर्मा जी पनवेल से, पंकज माहौड़ अमरावती से, प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे मानखुर्द से, फिरोज सिंगनपुरिया जी और बलकर्ण वर्मा जी, हीरामणि वर्मा जी, अजय साखरे इंदौर से, आप सभी बॉबी फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते थे। और जयपुर से आर.एन. सोनी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बॉबी फिल्म के इस गीत की रिक्वेस्ट की थी। अरविंद कुलकर्णी जी, संजय दर्शन जी, साथ ही साथ सुंदरी ठाकुर उज्जैन से, आप सभी के लिए मैं कार्यक्रम का एक और गीत प्ले कर रहा हूँ। आरती मुखर्जी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मासूम। बहुत ही खूबसूरत गीत है, गौर से सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम हम तुम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। अभी आप सुनेंगे हमारा एक विशेष स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जिसका नाम है किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव हो।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर

बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे

0: बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
2: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर

0: स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared.
3: Whether

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण

हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राग के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि अभी अभी तो आए हैं, अभी बहुत वक्त है आप सबके मैसेजेस लेने के लिए। लेकिन एक मैसेज है मेरे पास, उसको मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी इनका मैसेज मैं नहीं ले पाई थी। तो ये लिखते हैं सुरेश वैष्णव, मैं फिर से आ गया हूँ। हेलो रेखा जी, अब तो मेरा मैसेज ले लीजिए। लीजिए, आपका मैसेज हमने ले लिया है, बाकी मैसेजेस मैं बाद में पढ़ती हूँ। हम वो हैं जो पत्थर में भी जान डाल दें, हम वो हैं जो पत्थर में भी जान डाल दें, दिल धड़का दिया करते हैं। आप तो फिर भी इंसान हैं। जी हाँ, एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी, हम वो हैं जो पत्थर में भी जान डाल दें, हम वो हैं जो पत्थर में भी जान डाल दें और दिल को धड़का दें। आप तो फिर भी इंसान हैं दोस्तों। चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सभी से यही कहूँगी कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगे महफिल, लेकिन इस महफिल में भी आप सभी से यही गुजारिश कि आप जो मैसेजेस भेजें वो कम शब्दों में भेजें तो बहुत बहुत बहुत अच्छा होगा। एक और आवाज़ सुनवाने वाली हूँ मैं आपको, सच में ये आवाज़ सभी के दिल पर दस्तक देती है और कानों के ज़रिए जब दिल तक पहुँचती है तो वाकई कुछ तो जादू चला ही देती है।

जी हाँ दोस्तों, ये आवाज़ थी जगजीत सिंह जी की और आपके मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं, तो चलिए आपके मैसेजेस ले लेते हैं। मेरे पास एक और मैसेज आया, वो लिखते हैं, नमस्ते रेखा जी, ऐसे ही जल्दी जल्दी आया करो। वरुण लिखते हैं इंदौर से। एक और मैसेज जो मेरे पास आया, उससे पहले ये कह दूं कि वरुण आपको तो पता ही है कि मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ आजकल, और आज भी आई हूँ, और आप बहुत जल्द फिर से मुझे सुनेंगे यानी कि कल हम फिर मिलेंगे। एक और मैसेज, बहुत अच्छी शुरुआत, ये लिखा है एम राजकुमार ने त्रिची से, और वो ऐप के ज़रिए हमें सुन रहे हैं, तो और उन्होंने कहा है कि उनका मैसेज लिया जाए। तो देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी के मैसेजेस ले पाऊँ, इसीलिए कहा जाता है आप सबसे कि आप जब भी मैसेज करिए तो कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश करिए, ताकि सबके मैसेजेस लिए जा सकें। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी लिखते हैं शांति नगर सोनीपत से, वो लिखते हैं आदरणीय रेखा चौधरी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर, आपका अति उत्तम प्रस्तुति सदाबहार गजल्स बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, आपका हार्दिक बधाई, आपकी संध्या शुभ हो, रात शुभ हो, जीवन बहुत मंगलमय हो, कोटि कोटि धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो भी हमारा प्रोग्राम, जी हाँ शर्मा जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन किंतु परंतु, अगर हम मैसेजेस ही लेते रहेंगे तो फिर आगे हमारा प्रोग्राम कैसे बढ़ेगा, है ना? तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, कभी कभी दिल चाहता है कुछ ना कहा जाए, कुछ ना सुना जाए, बस आमने सामने बैठा जाए और एक दूसरे का चेहरा पढ़ा जाए। चेहरा ना सही, आंखें तो पढ़ी जा सकती हैं, अगर कोई सामने आंखों को पढ़ने वाला हो। बस इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांति में इस तरह का समय बताया जाए तो फिर कितना अच्छा हो, है ना? मेरी रूह तरसती है तेरी खुशबू को, मेरी रूह तरसती है तेरी खुशबू को, तुम कहीं और जो महको तो थोड़ा बुरा सा लगता है।

जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक और मैसेज आया है। वो लिखते हैं दिनेश कुमार भंडारी, तुलसीपुर नेपाल से। उनको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और उनको हमेशा ऐसे दिल पर देते दस्तक गीत बहुत बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कोशिश करती हूँ कि हमेशा हमेशा आपके दिल पर ये खूबसूरत दस्तक बनी रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, एक और प्यारी सी आवाज आप तक पहुंचाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और भी कहना चाहूंगी, क्योंकि एक मेरे पास जो मैसेज आया है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, तो लगता है वो बहुत बहुत बहुत परेशान है किसी चीज को लेकर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं, लेकिन ये परेशानियां ज्यादा वक्त तक नहीं रहती, इतनी बात समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से जिंदगी के भी दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। अगर आपकी खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही है तो गम भी बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। दिन हुआ है तो रात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास उनसे कभी बात भी होगी। वो प्यार है ही इतना प्यारा, वो प्यार है ही इतना प्यारा, जिंदगी रही तो उनसे मुलाकात भी होगी, मुलाकात भी होगी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

वेलकम बैक दोस्तों। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे रेखा जी, आप जी कैसे हो जी, गीत संगीत आपकी बातचीत कार्यक्रम प्रस्तुति बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो राजकुमार जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू रेखा मैम, पीसफुल मीनिंगफुल गज़ल प्रोग्राम। और ये आया है तुम्पा पॉल का रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से। एक और मेरे पास मैसेज है दोस्तों, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है इसलिए उनका जो मैसेज है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए ना, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी शिद्दत से हम तक अपने जो मैसेजेस हैं, दिल की बात है वो पहुंचाते हैं, लेकिन देखिए जब आप अपना नाम और जगह का नाम नहीं लिखते हैं, कम से कम अपना नाम लिखकर भेजेंगे तो भी आपका मैसेज शामिल किया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। और गीत और गजलों का प्रोग्राम इसी तरह अभी चलता रहेगा जी हाँ, दिल पर दस्तक देते रहेंगे ये प्यारे प्यारे सॉन्ग्स, गजलें और कुछ ऐसी आवाजें जो आवाज आप ताउम्र नहीं भूल सकते।

या दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है कि कुछ चीजें हमारी समझ के परे होती हैं और समझाने वाले बहुत से लोग होते हैं, आपको राय भी बहुत देंगे। जी हाँ, मेरे पास ऐसा ही एक मैसेज आया है, तो आप समझ रहे होंगे कि जिन्होंने मैसेज मुझ तक ये पहुंचाया है और उन्होंने ख़ास कहा है कि मेरा नाम ना लिया जाए। तो भाई, नाम तो आपने मेंशन किया ही नहीं, तो कैसे लिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आपको कुछ समझ ना आए, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास जाइए जो आपको सबसे ज़्यादा समझता हो, जो आपके दिल के करीब हो, और आपको जब वो कुछ समझाए तो उसको ध्यान से सुनिए। और अगर आपकी वो बात समझ में आती है तो समझ लीजिए कि वही आपका अच्छा और सच्चा दोस्त है। यूं ही अपनी बातों को सब जगह कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब आपको बहुत अच्छी अपने हिसाब से राय देंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए क्या सही है, शायद उनको पता नहीं होगा। पता सिर्फ उसी इंसान को होगा जो आपके दिल के करीब होगा। तो इसलिए आप अपने सबसे अच्छे दोस्त जो आपके दिल के करीब हों, उनके पास जाइए, उनके साथ समय बिताइए, बस देखिए आपका मूड कैसे सही हो जाता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये भी आया है दीपिका का नेपाल से। नाइस प्रोग्राम, और वो हमें लाइव सुन रही हैं ऐप के ज़रिए, और अपने डैडी को भी वो सुनवा रही हैं हमारा प्रोग्राम। तो थैंक यू सो मच दीपिका। एक और मेरे पास मैसेज है, ओल्ड इज़ गोल्ड, सिर्फ इतना ही लिखा है, ये लिखा है शर्मा जी ने। जी हाँ शर्मा जी, आपका मैसेज मुझ तक पहुंच गया है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, नमस्कार, गुड नाइट मैम, राम राम जी, कैन आई सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर प्लेइंग गज़ल फ्रॉम संजीव कुमार। हाँ, यहाँ पर मुझे ये कहना होगा कि ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम दोस्त नहीं है, और आपने जो नंबर भेजा है तो ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ये इजाज़त है ही नहीं हमें कि हम कोई भी मोबाइल नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर ऑन एयर कर सकें। तो प्लीज़ और सॉरी, मैं ये मोबाइल नंबर ऑन एयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, आप की अगर आपसे दोस्त की नहीं बन रही है या कोई खटपट हुई है, तो अपने तीसरे दोस्त को पकड़िए और उससे कहिए कि वो ये नंबर डायल करके बात करें। एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। ये भी तो एक कल्पना ही है मैम कि तो आगे जो भी लिखा है मैंने पढ़ लिया है दोस्त, और ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है। देखिए, ये आपकी दिल की उपज है, दिमाग की उपज है कि आप किस चीज़ के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, आप कभी भी नेगेटिव सोचें ही ना तो बहुत अच्छा होगा, और हमेशा पॉजिटिव सोचें। और फिर ये प्रोग्राम तो आपकी दोस्त रेखा चौधरी का प्रोग्राम है, जो कभी भी किसी को ना तो नेगेटिव सोचने के लिए कहती है और ना ही खुद कभी सोचते हैं। तो भाई, हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि आज का दिन तो संडे का दिन बहुत आरामदायक रहा होगा आपका, और कल के लिए आप बहुत ही फ्रेश मूड में जागेंगे। और इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स, गज़ल्स मैं आपको सुनवा रही हूँ, तो वो किस लिए? जी हाँ, ताकि आपके कानों के ज़रिए मिश्री से खोलते हुए आपके दिल पर ख़ास दस्तक दे सकें और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

0: जी हाँ दोस्तों, टिक टिक करती घड़ी दिलों को जोरों से धड़का रही है। जी हाँ, वक्त है, वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय मुट्ठी में भरी रेत की तरह निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। लेकिन किंतु परंतु आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हम फिर से मिलने वाले हैं ठीक 9 बजे, 9 PM। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, मैं कपिल पूनिया राजगढ़ चूरू से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मेरा दिल टूट गया है मैम, मैं क्या करूँ? तो कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ा सा सब्र कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि ये नहीं कहूँगी कि दिल टूटा है तो कोई बात नहीं, दिल टूटा है अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप फिलहाल के लिए जो आपको पसंद हो वो म्यूजिक सुनिए, जो आपको पसंद हो वो काम करिए, अपना ध्यान कहीं और लगाइए, उस जगह ना लगाकर, क्योंकि ये चीज़ें वक्त मांगती हैं, समय मांगती हैं। तो समय जैसे जैसे धीरे धीरे बीतता जाएगा, उस तरह आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदी पर रात 9 बजे।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है?
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो FIR कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना,

0: न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

जी हाँ, मेरे पास मैसेज आया है संजीव कुमार का, और ये विलेज है कुखानी शायद, तहसील और डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से, और आगे इन्होंने इंडिया लिखा है, तो दोस्त उसको लिखने की तो ज़रूरत थी ही नहीं। खैर, लिखा है तो अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा रिक्वेस्टेड प्रोग्राम नहीं है, तो इसमें अगर आप जो चाहें वो गज़ल मैं चलाऊं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी गज़ल चलाऊं वो आप सबके दिल के करीब पहुंच जाए। एक और मेरे पास मैसेज है, गुड नाइट लिखा है, स्वीट ड्रीम लिखा है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। तो दोस्तों, क्या कहूँ आपसे, यही कहूँगी कि कल के इंतज़ार में, जी हाँ, टिक टिक करती घड़ी बहुत कुछ समझाती रहेगी, याद दिलाती रहेगी, क्योंकि कल होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं, लेकिन हमारे और आपके मिलने में बहुत घंटे हैं, लेकिन न दिन न महीने न साल। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ आपको सुनवा रही हूँ और साथ ही ले रही हूँ आप सबसे विदा। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 9 बजे, यानी कि रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इसी तरह से FM रेनबो इंडिया सुनते रहिए।

नमस्कार। 00:00 हो गया है वक्त, इस वक्त दिन का कैलेंडर बदलने का पूरा संकेत कर दिया है और ठीक जीरो आवर्स की जो है ये इंगित हो रही है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और ये जीरो आवर्स हमसे कह रहे हैं कि अब जीरो आवर्स शो बजाइए, लेकिन हम कहेंगे नहीं, उससे पहले एक घंटे के मुख्य समाचार। सबसे पहले जैसा कि सिलसिला चला आ रहा है, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी 11 लोगों के फंसे होने की आशंका है, बचाव अभियान भी जारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया कि सत्यनिकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तहत छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमारत गिरने की इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया है। विज्ञान, स्टार्टअप और उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर भी बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस महीने की 12 और 13 तारीख को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्रण को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात भी दोहराई गई है। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं हम जीरो आवर शो लेकर। आपके साथ जुड़ा रहूंगा मैं, रजत शर्मा। नमस्कार और स्वागत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
8: ठीक है?
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
10: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

एम राजकुमार त्रिची से, अफशा खानम हमारे साथ जुड़ी ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश से, धर्मेंद्र भाई जुड़े इसराइल से, और रिया दिल्ली से एक और हेलो हवे हुई थी हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और आगे मैसेज भी नहीं किया। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, फिलहाल आप सभी के आभार के साथ और इस गुजारिश के साथ कि हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम तो अभी जारी हैं, चलते ही रहेंगे आगे पूरे पूरे दिन, लेकिन अभी रात में अब हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया है कि सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट हाउस बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तहत छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। वहां भी प्रभावित छात्रों को अस्थायी आश्रय दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इमारत गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप और उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोता जुड़े हुए थे कुछ देर पहले हमारे सुहानी रात के साथ। अब वक्त हो चुका है ठीक 2 बजे घड़ी के हिसाब से, और घड़ी ने इंगित दे दी है, संकेत दे दिया है कि अब होने चले इस घंटे के मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया है कि सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तहत छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। वहां भी प्रभावित छात्रों को अस्थायी आश्रय दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इमारत गिरने की इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की यह रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया है। विज्ञान, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच मजबूत संबंध बनाने पर भी जितेंद्र सिंह ने बल दिया। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एशो में भाग लेने के लिए इजिप्ट यानी मिस्र पहुंच गई है। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। ठीक 2:02 और समय हो चला है प्रोग्राम भुलाए ना बनेगा। मेरे यानी रजत शर्मा के साथ इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खूबसूरत गीतों की आज की इस लड़ी और झड़ी में आप भी भीगने का लुत्फ उठाएं और ट्यून करें। इसके अलावा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। देश और दुनिया के तमाम हिस्सों और कोनों से आप आकाशवाणी रेनबो के कार्यक्रम सुन सकते हैं, इस कार्यक्रम को भी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम भुलाए ना बने आकाशवाणी रेनबो 102.6 और मैं हूँ रजत। बस थोड़ी देर में

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अभी आप जुड़े थे हमारे साथ प्रोग्राम भुलाए ना बने में, इसके बाद मिडनाइट मेलोडीज आपका स्वागत करने के लिए तैयार। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक जानकारी उन खबरों की जो इस घंटे हमारे रूबरू आई हैं। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से अधिक वाले सभी अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से सील किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। सत्यनिकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और प्रभावित छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए इन दोनों कॉलेजों में अस्थायी व्यवस्था के तहत छात्रों को ठहराया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इमारत गिरने की इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मेड इन इंडिया और बिल्ट इन फ्रांस की भावना का संयुक्त प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की यह रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम ही होने दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें फिलहाल रद्द हैं। ज्वालामुखी की राख के कई हिस्सों में फैलने से अन्य घरेलू हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारे साथ मिडनाइट मेलोडीज में। जुड़े रहिए, आप सभी का स्वागत है।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, सुबह के 4 बज चुके हैं। आप इस समय जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। लीजिए प्रस्तुत हैं सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से अधिक वाले सभी अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से सील किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। सत्यनिकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और प्रभावित छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए इन दोनों कॉलेजों में अस्थायी व्यवस्था के तहत छात्रों को ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मेड इन इंडिया और बिल्ट इन फ्रांस की भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की यह रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जकार्ता के सोकर्णो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी सभी उड़ानें रद्द। ज्वालामुखी की राख के कई हिस्सों में फैलने से अन्य घरेलू हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस फ्रीक्वेंसी में और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। समय 4:02 हो चुका है। लीजिए प्रस्तुत है थोड़ी ही देर में कार्यक्रम सारेगामा मेरे यानी रजत के साथ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।